नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रही हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीति

0: नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें।

व्यर्थ है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। आठ बजकर 30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश। 5 छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका कटते।

गारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। दस बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविन्द्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविन्द्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत होती है। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है,
2: हाँ।
1: उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोजर भी रहे हैं। अण्णा जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
0: जी,
1: लाएंगे
0: जी।
1: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीजें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले, ऐसे एक साथ बिठाए,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
0: जी,
1: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
0: बहुत सुंदर रचना
1: है, उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
0: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
1: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं, तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है, वो ताल जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द
1: चक्कर लगाती है, तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जगह, अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
0: जी,
1: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो
0: जी। हाँ जी,
1: तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
0: क्या बात है।
1: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
0: जी,
1: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
0: जी,
1: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है
0: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
1: पलकों की छाव में, इस फिल्म का, कोई मेरे माथे की बिंदिया।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
1: हाँ,
0: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही।

0: पलकों की छाओ में। इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविन्द्र खासनीश जी। रविन्द्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविन्द्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुडियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना अफसर फिल्म से। सुरैया की आवाज में नरेंद्र शर्मा के बोल, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया एमओयू। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास

0: विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी

0: कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 बजे उस समय हुई जब एक बेकाबू एसयूवी ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया एमओयू। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

सीता और गीता इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

हर देश में पूजा हो पैसे की, हो चाहे हो पटियाला भाई चाहे हो मंबासा, सुन मुनिया ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा हो।

हमें राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मौसम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गुलजार की बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से, मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपने रंग हजार इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। प्रतीक्षा कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही

0: नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

0: हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रूपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला

0: अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
3: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Mishra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.

0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economy is of

चित्रलोक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी फिलॉसफी के साथ। संघर्ष फिल्म के इस गाने के साथ रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाजें, समीर के बोल हैं और म्यूजिक है जतिन ललित का।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

बच्चों के हैं तीन काम, खेल कूद, पढ़ाई और आराम। इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथपथ, पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़, थकान के बावजूद सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग।

0: चिल्लर पार्टी इस फिल्म से सुन रहे थे आप। ये गाना अमित त्रिवेदी, जयश्री त्रिवेदी की आवाजों में, नितेश तिवारी और अमित त्रिवेदी के बोल और म्यूजिक अमित त्रिवेदी का।
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है।

0: अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अनवर फिल्म से, रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाजों में सईद कादरी के बोल, म्यूजिक है मिथुन का।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज सुनी तो वो किसी साज की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी

0: हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था,
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई है अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद इज ऑल्सो प्रिविक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौवलिया टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहां पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बाजी, जिसे हम प्यार से अब्बाजी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बाजी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: शिव कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफी आना जाना रहता था। और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का। और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सबको देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफी चीजें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीजें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गजलें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहां मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहां पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश,

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा पदस्थ रहा उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही जम जा।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी,
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे।
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते थे तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे,
1: गजब,
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे।

0: बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सीवाई चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था।
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था। लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था।
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है। तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान।
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा, तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दाल सक्सेना पराग के संपादक थे। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी,
1: 3
0: पेज की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर,
0: और हाँ उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैं लिख सब लिख दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ के पानी में कुछ ऐसा है, तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है, और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी

0: बहुत बरस बाद तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी क्या बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी और ये यही आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी, तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं। तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रूपये का मनी ऑर्डर आया तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ। लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी। उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते।
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक है, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहभाग होता है, उसमें मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रूपये, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रूपये का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंग कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ।

0: तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? कहा तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूँ, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए। मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
0: बात। हाँ, जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रूमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ। लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा कविता सिर्फ रूमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी। तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुनाइए।
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ
1: तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओ, गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है।

0: मिलता कहीं उधार नहीं है। भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है। छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो। अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है। शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है। सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है। कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं।

0: सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो, अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: की कविता की आपने कविता सुनाई, ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी
1: साए में धूप
0: मशहूर रचना।
1: तो फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं, जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
0: जी, जी,
1: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी, तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
0: जी, जी।
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
0: जी, तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या
1: नाटक
0: कहानी है?
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक कैरेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
0: जी,
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाश

0: करते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे रागों का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा।
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखू, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी, जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। हाँ। उनका आशीष था।
1: जी।
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया।
1: कहाँ पर था? किस?
0: वेदा कुंभा थिएटर में।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक ये
1: मराठी में
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी, क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा,
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश से नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है? तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि

0: थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
1: जी
0: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
1: क्या बात है, वाह।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
1: वा।
0: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह वा, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
1: वाह।
0: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20-30 ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, 3 दिन 3 बच्चे एक माँ एक खबर।
1: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए,
1: हाँ।
0: पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है?
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं हम, दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में और वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है, मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते

0: करते हैं और बात करके हम चले आते हैं और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी, तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
0: नहीं नहीं,
1: यहाँ सकारात्मक है।
0: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी,
0: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम लगाने आए हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
1: सृजन करने आए हैं। जी जी,
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
0: पहली
1: क्या,
0: बार
1: देखिए
0: मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी,
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली गंगा यमुना, उसमें रविन्द्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा।
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी,
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा।
1: जी,
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा। फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ, तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाश है उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए फायदा तो होता है, उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
1: जी,
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं।
1: जी,
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है।
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहाँ।
1: जी,
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाए। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप
0: बहुत
1: क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं, हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है,
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वेराइटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये

0: चीजें रखें और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लीगेसी थी वो लीगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लीगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Tarang, tarang.
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: वफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, तो ये दिल दीवाना।
1: मोहम्मद रफी और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे आनंद राज, आनंद का संगीत था, ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग

0: ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉ जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी।

0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया, राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

शिक्षा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गांव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओ, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में, किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गांव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गांव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो।

से गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गांव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गांव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ में लाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट, पगडंडी, खेत, खलिहान, नदी, झरने, रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गांव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें। श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है। यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुराकर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं। और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गई और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बराहत फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गांव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गांव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूं और महसूस करता हूं जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूं। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट में, जी हां, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन की जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

सगाई है, आती पूरन माशी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारण उतार, शादी का संदेशा तेरा है।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
2: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
2: बस जल्दी से अभी तो लिख दे।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांद दूध जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया, मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान जो

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके।

0: के और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत

0: भारत का स्पष्ट रुख है।
1: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपना

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे

0: से नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: अब बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
1: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
1: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने

0: करनी चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ के स्वभाव भी कितने मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियाँ लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन

0: वास्तव में क्या है?
1: रामकृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: रामकृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिलता।

0: जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा।
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आएं। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो, वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पौंडीचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार

0: संस्कार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,
4: घर के पास लगा था मेला,
3: उसमें आया चाट का

मेले की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर गेम ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?

0: बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए।
1: भीमव्वा डोडबलप्पा शिलेक्या थारा जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
0: जी,
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
0: जी।
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
1: जी। हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्या थारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है,
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ,
1: इस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहां के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है कौशल है वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहां के उत्सव हैं त्योहार हैं जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डा बलप्पा शिलेक्या थारा को भारत का 4वां सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं।
0: हाँ,
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो
0: बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में। आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के लिए खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो

0: से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: जिस तरीके खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है खेल को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन ले फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। हर बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: है। और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह में साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए आती है। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं। बहुत
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
1: बिल्कुल,
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: हैं। और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना, उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन

0: ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो चल रही गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए थे बच्चों के खेल की, बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो हैं गुस्सा है तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं कई बार से तकलीफ का अंदाजा ना हो, इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी बतानी है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने में साथ में आ जाते हैं। जी वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना।
0: हाँ।
1: तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना, कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते। तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
1: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तकिया भी होते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश।

0: है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी न कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
0: क्या बात,
1: क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा का। जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब हम मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन

0: आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी गाने की,
1: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है। एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
0: बिल्कुल, एक और श्रोता जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
1: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
0: बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही इन्होंने।
1: और भी संदेश है
0: तो एक और जमाई श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी है। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में, उसका दिखावा करने के बारे में, एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और इसी साथ एक और हमारी श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी।
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और न केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही थी, बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं,
1: हेयर पिन, चाबी लेता कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहां पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें।
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं

0: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना
1: है। सबसे बड़ी चीज है, आप फिर अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चाहिए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन कर अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैसल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: अरे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर पता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो गोल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी।
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज़ के सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा?
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का, आपके गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है? तो
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी,
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूं पिछड़ा याद मिला दे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था। पहली से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेंड में तो दसवीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विवेक भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और अमित भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए?
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकार सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी।
0: क्यों?
1: लड़की थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपने पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बाद।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात
1: है,
0: हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: फिल्मी का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ।
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत भी हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी,
1: बिल्कुल देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर आसाम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है। आज तो बारिश हो रहा है।

0: इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
1: बहुत अच्छी बात है ये तो।
0: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
1: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
0: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा, और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
1: चाय का खेती भी करते हैं?
0: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
1: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
0: जी जी जी।
1: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
0: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
0: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
0: बनाती भी है और बजाती भी है।
1: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
0: बम्बू से बनाता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
0: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में
1: अभी तो?

0: फिलहाल धूप निकल रही है।
1: हाँ, तो दीपक जी और क्या करती हैं इसके अलावा, कोई और शौक है आपके?
0: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
1: बस और कुछ नहीं।
0: और रेडियो सुनता हूँ।
1: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
0: जी बिल्कुल, सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
1: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
0: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
1: अरे
0: पसंद है जरा।
1: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
0: खो खो।
1: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
0: जी
1: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
0: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
1: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
0: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
0: पढ़ाई 12वीं तक की।
1: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
1: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं चंचल कुशवाहा आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातचीत और करेंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हम सब लगातार दौड़े जा रहे हैं। दोस्तों सही कह रही हूं ना, आपके साथ भी यही होगा कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही दौड़े जा रहे होंगे, कभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए, कभी करियर को पूरा करने के लिए, तो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और इस दौड़ में हमारे पास काम के लिए वक्त है, लेकिन अक्सर हम खुद के लिए ही वक्त नहीं होता हमारे पास। अक्सर हम खुद को ही भूल जाते हैं और हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जब थकान और स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो याद आते हैं वो बचपन के पल, जब खुश रहने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। बचपन की बात करें तो बचपन का ही जो खुश रहने का एक नजरिया था वो काफी अच्छा था। हम बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे बस खुश रहते थे और खेलते थे। और दोस्तों, जब हम बचपन की बात करें तो खेलों की याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। साइकिल चलाना दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, इतने सारे गेम्स खेलना, क्योंकि ये सिर्फ गेम्स नहीं होते थे बल्कि हमारी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल होते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के इस दौर में आउटडोर गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जाता है, ताकि हम खेल के महत्व को समझें और हमेशा हम खेल को महत्व देते रहें। क्योंकि दोस्त, खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता बल्कि सेहत, खुशी और बेहतर जीवन की कुंजी भी है। तो दोस्तों, खेल हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत अच्छी कुंजी मानी जाती है। और दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में हम और गहराई से जानने के लिए आपको सुनवाते हैं यह वार्ता शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी के बारे में, जिसके वार्ताकार हैं गजेंद्र कुशवाहा।
1: नमस्कार, आज हम बात करेंगे खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। हर वर्ष खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल खेल की महत्ता को रेखांकित करने के लिए नहीं, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे खेल समाज में विकास, एकता और शांति का माध्यम बन सकता है। जब हम खेल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या ओलंपिक जैसे आयोजन आ जाते हैं, लेकिन खेल केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है। यह एक संस्कृति है, एक आदत है, एक जीवन शैली है।

खेल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोगों के जीवन में ऊर्जा, प्रेरणा और संतुलन लाता है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने खेल को विकास और शांति के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी है। अब जरा सोचिए, अगर हम नियमित रूप से कोई खेल खेलें तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शरीर सक्रिय रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, हृदय गति संतुलित होती है, वजन नियंत्रित रहता है और सबसे महत्वपूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। आज जब पूरी दुनिया में शारीरिक निष्क्रियता एक गंभीर समस्या बन गई है, ऐसे में खेल हमारे जीवन में नया संचार ला सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो खेल उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। उनकी हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, उनकी ऊंचाई, ताकत और फुर्ती, ये सब खेल के माध्यम से ही संभव हो पाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ खेल मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करता है। आज के समय में जब मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में खेल मानसिक राहत का एक बेहतरीन माध्यम बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार हमारे शरीर में एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन तनाव को कम करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। इसके अलावा खेल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता, धैर्य और संयम जैसी मानसिक क्षमताएं भी खेल के माध्यम से विकसित होती हैं। खेल और सामाजिक विकास की अगर बात करें तो एक अच्छा खिलाड़ी न सिर्फ अच्छा शरीर और अच्छा मन रखता है, बल्कि वह समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। खेल समाज में समस्या लाता है। जब अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और देश के लोग एक ही टीम में या एक ही मैदान में एक साथ खेलते हैं तो आपसी मतभेदों की दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। खेल हमें सिखाता है टीम वर्क यानी मिलकर काम करना, अनुशासन, नियमों का पालन करना, सम्मान न केवल अपने साथियों का बल्कि विरोधियों का भी, सहिष्णुता, हार को भी स्वीकार करना और उससे सीखना। कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई और खेल एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। सच तो यह है कि एक अच्छा खिलाड़ी पढ़ाई में भी बेहतर होता है, क्योंकि उसमें अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास पहले से ही होता है। आज की दुनिया के कई सफल लोग, चाहे वे वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या नेता, उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी खेल को जरूर अपनाया है। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा देता है, बल्कि जीवन में संतुलन भी बनाता है। भारत जैसे युवा देश में जहां 65% जनसंख्या युवा है, वहां खेल एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो युवा ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है। अगर देखा जाए तो भारत ने ओलंपिक, एशियाई खेलों में, अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। हमारी बेटियां जैसे पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रही हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा, डी गुकेश, अभिनव बिंद्रा और कई अन्य खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया है कि भारत केवल क्रिकेट का देश नहीं बल्कि खेलों का देश है। सरकार भी अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे खेलो इंडिया अभियान, जिसमें बच्चों को और युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब यदि कोविड-19 के बाद की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जब दुनिया ने कोविड-19 जैसी महामारी का सामना किया, तब हमें एहसास हुआ कि केवल दवाइयां ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली यानी व्यायाम, योग और खेल हमें बड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। घर में रहने के दौरान बहुत से लोगों ने ऑनलाइन फिटनेस, इंडोर गेम्स, योगा और छोटे घरेलू व्यायामों माध्यमों से खुद को फिट रखने की कोशिश की है। यह साबित करता है कि जब हमारे पास संसाधन नहीं भी हों, तब भी हम खेल और फिटनेस को अपनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं खेल और डिजिटल युग की। तो आज का समय डिजिटल युग का है। बच्चे अब मैदान की बजाय मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। जरूरत है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ खेल को भी जीवन का हिस्सा बनाएं। अब तो ई स्पोर्ट्स यानी डिजिटल खेलों का भी चलन बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्क्रीन से जुड़ा खेल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को वो लाभ नहीं देता जो असली मैदान का खेल देता है। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को और युवाओं को मोबाइल गेम से हटाकर असली खेलों की ओर मोड़ें, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल में गेम खेलने के

0: आदि हो गए हैं। इससे उनके शरीर को नुकसान, आंखों में थकावट और मन में चिड़चिड़ापन होता है। मोबाइल में गेम खेलना असल खेल का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को मोबाइल से निकालकर पार्क या मैदान में ले जाएं। बच्चे जब बाहर दौड़ते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, वहीं ये असली जीवन जीना सीखते हैं। और खेल और शिक्षा के अगर संबंध की बात करें तो खेल हमें कई जरूरी बातें सिखाते हैं, जैसे नियमों का पालन करना, हार को स्वीकार करना, समय पर पहुंचने की आदत डालना, मेहनत करने की आदत डालना, और जो सबसे अहम बात है, खुद पर विश्वास रखना। जो ये सब सीखता है वह जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। अब अगर खेल और पर्यावरण के संबंध की बात करें तो आप सोचेंगे खेल और पर्यावरण का क्या संबंध है। असल में जब हम खेल के मैदान में जाते हैं, पार्क में दौड़ते हैं या खुली हवा में व्यायाम करते हैं तो हम पर्यावरण से जुड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास खेल के मैदानों, पार्कों और ओपन स्पेस को बचाएं और साफ रखें। श्रोता बंधुओं, आजकल बहुत से युवा सोचते हैं कि केवल पढ़ लिख कर ही अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है, लेकिन खेल भी एक पूरा क्षेत्र है जहां करियर बन सकता है। जैसे खिलाड़ी बनकर, कोच बनकर, फिटनेस ट्रेनर बनकर, खेल पत्रकार बनकर, खेल उपकरण डिजाइनर बनकर या स्पोर्ट्स मैनेजर बनकर भी। सरकार की मदद से अब ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भी खेलों को एक पेशे के रूप में अपनाने का रास्ता खुल रहा है। अब अगर स्कूल और कॉलेजों में खेल की बात करें तो कई बार अभिभावक यह सोचते हैं कि खेलने से बच्चे का समय खराब होता है और पढ़ाई में नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो बच्चे खेलते हैं वे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो साथियों, अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो आज की हमारी वार्ता में हमने जाना कि खेल जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। खेल सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को तंदुरुस्त और मन को शांत रखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर चुस्त होता है, दिमाग ताजा रहता है और मन खुश रहता है। खेल हमें सिखाते हैं कैसे नियमों में रहकर काम करें। खेल हमें हार मानने से पहले आखिरी दम तक कोशिश करना सिखाते हैं। मैदान में जब एक खिलाड़ी गिरता है और फिर खड़ा होकर दौड़ता है, वही भावना जीवन के हर मोड़ पर हमें जीत दिला सकती है। साथियों, हमें यह समझना होगा कि खेल ना तो उम्र देखते हैं, ना जाति पाति और ना ही आर्थिक स्थिति। खेल सभी के लिए है। जब कोई बच्चा गली में दौड़ता है, जब कोई महिला सुबह की सैर में बैडमिंटन खेलती है, जब बुजुर्ग पार्क में योग और टहलते हुए हंसते हैं, यही असली खेल भावना है, यही असली जीवन है। इसलिए आज जरूरत है कि हम खेलों को सिर्फ स्कूल की किताबों का हिस्सा ना माने, बल्कि इसे जीवन की प्राथमिकता बनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अंक लाने की दौड़ में ना दौड़ाएं, बल्कि उन्हें मैदान की मिट्टी से जुड़ने दें। मैदान से जो शिक्षा मिलती है वह किसी किताब से ज्यादा गहरी और सच्ची होती है। हमें यह समझना होगा कि खेलना समय की बर्बादी नहीं बल्कि ऊर्जा भरने का जरिया है। तो साथियों, आइए अब हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम खुद भी रोज थोड़ी देर खेलेंगे और अपने बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करेंगे, अपने मोहल्ले, गांव और स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं करवाएंगे और सबसे जरूरी हम खेल को सम्मान देंगे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन बसता है और एक स्वस्थ मन से ही स्वस्थ समाज बनता है। खेल सिर्फ एक घंटे की दौड़ नहीं, यह पूरे जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है। खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें सिखाता है कि खेलें, क्योंकि खेल हम जीना सीखते हैं, सच्चाई से, हिम्मत से और मुस्कुराहट के साथ। तो साथियों, हम अपने जीवन में खेल को एक खास जगह दें, चाहे उम्र कोई भी हो, बच्चा, युवा या बुजुर्ग, सभी के लिए खेल जरूरी है। इसलिए खेल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, हर गिरावट के बाद उठना और मुस्कुराते हुए फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। आज की दुनिया में सेहत और सुकून दोनों की जरूरत है और दोनों खेल से मिलते हैं। इसलिए खेल को सिर्फ पसंद नहीं बल्कि जरूरत बना लें। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी हम सभी ने जाना एक वार्ता में कि खेलना हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, खेल खेलने से हम सभी के अंदर टीम वर्क, लीडरशिप, डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमने सुना भी है ना कि घर में हम सभी कहते हैं छोटे बच्चों से, अपने भाई बहन से, कि खेलो मत, पढ़ने पे ज्यादा फोकस करो। तो आई थिंक ये गलत है कि हम सभी को पढ़ने के साथ साथ उनको खेलने के

ये भी थोड़ा सा प्रेरित करना चाहिए ताकि वो बाहर निकले, खेल खेलें, खेल खेलना सीखे और साथ ही साथ उनके अंदर टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स डेवलप हों। तो दोस्तों आज से ही आप भी खेल खेलना शुरू करें। और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि खेल सिर्फ बच्चे ही खेलें, खेल हमारे बड़े लोग या फिर जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, इंजीनियर्स हैं, हर सारे सेक्टर्स के लोग खेल खेलना सीखें। आप जरूरी नहीं कि आप सुबह से उठ के खेल खेलना शुरू कर दें, आप खाना के बाद रात को आप आधे घंटे सिर्फ, अगर आप 30 मिनट्स भी खेल को देते हैं तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम नहीं रहता है। तो आप अगर खेलोगे तो आप फैमिली के साथ टाइम दोगे और आप कई सारी चीजों को करना सीखोगे। तो आज से ही आप खेल को इम्पोर्टेंस दें और हर दिन 30 मिनट्स आप खेलने के लिए आप निकालें टाइम। तो दोस्तों अगर, और जरूरी नहीं कि खेल सिर्फ खेला ही जाता है, इसमें हम कई सारे करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर जिसको खेलना काफी ज्यादा पसंद है तो वो इसमें अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आप बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर क्या कहते हैं वॉलीबॉल, अगर आपको बहुत अच्छा खेलना आता है तो आप इसमें काफी अच्छे सुपरवाइजर या आप इसमें अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर अपने आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा। अगर आप मैदान में नहीं उतरेंगे, मैदान में खेलेंगे नहीं, तो आप सीखोगे कैसे और अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं गीत हर मैदान फतेह की ओर, फिल्म संजू से श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की आवाज में यह गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत कर हर मैदान फतेह, फिल्म संजू से श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गीत। तो दोस्तों अभी और भी बातचीत होने वाली है, फिलहाल चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की ओर।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के फिर हसी रात।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज़

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी अभी बात कर रहे थे कि खेल हमें सिर्फ फिट ही नहीं बनाते हैं, खेल हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देते हैं, बल्कि हमें बड़े बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी देते हैं। और बात हो खेल के थ्रू अपनी पहचान बनाने की, तो आज के युवाओं के लिए एक नाम बहुत प्रेरणादायक है और वो है वैभव सूर्यवंशी का, जो बिहार के रहने वाले हैं और जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर उन्होंने क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके IPL में अपनी धमाकेदार बैटिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों वैभव की सफलता से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर सपने बड़े हों, मेहनत लगातार हो, तो खुद पर विश्वास भी होना चाहिए और साथ ही अगर हम सभी के पास ये सारी तीनों चीजें हैं तो हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों आप भी आज से ये सोच लीजिए कि खेल सिर्फ हमारे लिए मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि हम इसमें एक अपना करियर बना सकते हैं, अपने सपने देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी वैभव सूर्यवंशी की तरह सीखिए कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा करें और कैसे हम आगे बढ़ें। तो दोस्तों अभी और भी आपको रोचक जानकारियां मिलने वाली है, फिलहाल चलते हैं एक और छोटे से ब्रेक की ओर।
6: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
7: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खोलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें नियमों का पालन।

0: ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
1: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
3: तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम सभी बात कर रहे थे सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की, तो दोस्तों सपने तो हर युद्ध देखते हैं, लेकिन सपनों को सही डायरेक्शन देने के लिए एक बेहतर करियर के चुनाव की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, हम अक्सर आपके लिए करियर से जुड़े नए नए विकल्प लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो न सिर्फ सम्मान और जिम्मेदारी देते हैं, बल्कि समाज में बदलाव

आपके लिए करियर से जुड़े नए नए विकल्प लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो न सिर्फ सम्मान और जिम्मेदारी देते हैं बल्कि समाज में बदलाव लाने का अवसर भी प्रदान करते हैं, और वो है लॉ में करियर बनाना। दोस्तों, लॉ की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले वकील और अदालत की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज लॉ सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं है, बल्कि हम यूथ्स के लिए एक करियर के अनेक द्वार भी खोलता है। किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए ऐसे पेशवरों की हमेशा आवश्यकता होती है जो कानून को समझे और समाज को एक सही डायरेक्शन देने में योगदान दे सके। तो दोस्तों, आप भी कानून को समझने और समाज को एक नई डायरेक्शन देने में योगदान देना चाह रहे हैं तो आप भी लॉ में अपना करियर बना सकते हैं। पर दोस्तों, इसके लिए आपको 12वीं करनी होगी। उसके बाद 12th के बाद आप लॉ में जाना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष के इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे कि BA LLB, BBA LLB या फिर BCom LLB कर सकते हैं। और देश में कई जगह लॉ में एडमिशन लेने के लिए क्लैट जैसी परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसके थ्रू आप BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें करियर के कई सारे अवसर हैं, जैसे कि लॉ की पढ़ाई के बाद आप एडवोकेट, कॉरपोरेट लॉयर, लॉ प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये काफी अच्छा करियर कि आपको अगर पसंद है तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। और दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि हम जब किसी के सामने खड़े हो और हम बोले कि मेरा भाई वकील है, ये तो फीलिंग सभी के अंदर आती है ना कि हम भी किसी के सामने खड़े होकर बोले कि मेरा भाई वकील है। तो चलिए फिर आपको ले चलते हैं इस गीत की ओर और कार्यक्रम को और भी शानदार बनाते हैं।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत मेरा भाई वकील है, फिल्म जॉली एलएलबी से अखिल तिवारी, अमन पंत और साथियों की आवाज में यह गीत। तो दोस्तों जिस तरह हम पढ़ाई, करियर और अपने अन्य कामों के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह हमें भी अपनी दिनचर्या में खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा समय निकालना काफी जरूरी है, क्योंकि हम सभी ने अभी जाना कि खेल हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं बल्कि अनुशासन, टीम वर्क, आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करना भी सिखाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इसलिए आप भी आज से ही रोज थोड़ा सा खेलिए, सक्रिय रहिए और जीवन को खुशहाल बनाइए। तो दोस्तों ऐसे ही अपने करियर को, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और ऐसे ही उनको पूरा कीजिए। और दोस्तों आप आगे क्या करने वाले हो और लॉ बनने वाले हो या नहीं, ये अपने सुझाव हमारे आकाशवाणी झांसी के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर जरूर शेयर करें।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम विविधा।
1: विविधा

0: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अपने रेडियो मित्र राजेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा, महत्व एवं उद्देश्य, इनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही लेके आए हैं आपके लिए एक भेंट वार्ता, झांसी में खेल विकास और भविष्य की योजनाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे सुनील कुमार बॉक्सिंग, उप क्रीड़ा अधिकारी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी, और इनसे बातचीत करेंगी लक्ष्मी माहौर, प्रस्तुत करता होंगी अंजलि कुमारी। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इसकी स्थापना, शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संघ संस्थान और जो बाल विकास अधिकार संगठन थे, उन्होंने इसका प्रयास किया, समूह विकास किया। साथ ही इस दिवस का उद्देश्य खेल को वैश्विक विकास की प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र मान्यता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिसमय 1989 के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत खेल को पहले ही से ही मान्यता प्राप्त है, जो प्रत्येक बच्चे के विश्राम अवकाश तथा खेल के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 11 जून 2024 को सबसे पहले ये मनाया गया था। खेल दिवस को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, और इसके लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सकें। खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। यह साझा जुनून, समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है। तो ये तो हुई बात खेल दिवस के बारे में, और अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत झांसी में खेल विकास और भविष्य की योजनाएं। भेंट वार्ताकार हैं सुनील कुमार बॉक्सिंग, उप क्रीड़ा अधिकारी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी, और इनसे भेंट की है लक्ष्मी माहौर ने, प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।
1: श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी श्रोताओं और खेल प्रेमियों को नमस्कार। खेल सिर्फ शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत स्तंभ है। जब हम खेलों की बात करते हैं तो वीरों की भूमि झांसी का नाम स्वतः ही हमारी जुबान पर आ जाता है। मेजर ध्यानचंद जैसे महान हॉकी के जादूगर की कर्मस्थली रही झांसी ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के इस विशेष दिन पर हमारे साथ झांसी में खेल के वर्तमान परिदृश्य, जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों और आने वाले

0: कल की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। सुनील कुमार, बॉक्सिंग उप क्रीड़ा अधिकारी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी। सर, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैम। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मैं झांसी की रानी की धरती को नमन करते हुए, कर्म स्थली दत्त ध्यानचंद जी की धरती को नमन करते हुए सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
0: सर, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल युग में बच्चे मैदानों से दूर होकर मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। ऐसे में एक इंसान के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल क्यों और कितना जरूरी है?
1: जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अब मोबाइल लेना या स्क्रीन पर देखना कोई गलत चीज नहीं है, पर उसके नेगेटिव प्रभाव बच्चों पर काफी अधिक पड़ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा घरों में रहकर समय व्यतीत कर रहे हैं, खेलों के मैदान से दूर होते जा रहे हैं।
0: जी।
1: मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभिभावक का भी इसमें एक बड़ा रोल अदा करता है, कि हम उन अभिभावक के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को मैदानों से जोड़े, खेल मैदानों पर लेकर जाएं, जिस तरीके से आप स्कूल में लेकर जा रहे हैं, डांस क्लास के लिए लेकर जाते हैं, उसी तरीके से हम खेल मैदान की तरह अपने बच्चों को, बालक है बालिका, आगे लेकर जाएंगे, देश के लिए सोचेंगे कि हमारा बच्चा खेलों में आगे नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, तो निश्चित ही हम मोबाइल से दूर होते चले जाएंगे।
0: सही बात है।
1: और पुराने खेलों को हमें वापस लाना होगा, हमें अपने खेलों के माध्यम से अपने बचपन को जीना पड़ेगा, तभी हम उस खिलाड़ी या उस बच्चे का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण होगा उसके जीवन में।
0: सही बात है। सर, पुराना दौर था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक शानदार करियर विकल्प बन चुका है। इस बदलते नजरिए पर आपका क्या सोचना है?
1: मेरा सोचना यही है, खेल की दृष्टि से खेलते कूदते का मुंह लाजवाब होते जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारी जो सरकार है वर्तमान में, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के द्वारा जो खेलों की योजनाएं हैं, बढ़ चढ़कर उसमें जो प्रतिभाग हो रहा है, तो उससे हमारा खेल स्तर काफी आगे गया है, जिसमें करियर के लिए भी, देश के मेडल के लिए भी योजनाएं हमारी आगे आ रही है, और उसमें बच्चों को, खिलाड़ियों को, हमें सब लाभान्वित हो रहे हैं।
0: मतलब आप कहना चाहते हैं पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है?
1: बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, हर स्कूल में, चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे इंटर कॉलेज के लेवल का हो, तो वहां पर कंपलसरी एक स्पोर्ट्स को कर देना चाहिए, कि कम से कम दो पीरियड्स एक ही बच्चे को वहां पर मिले, और वहां पर प्रशिक्षित, चाहे कोच हो, चाहे वहां पर ट्रेनर हो, चाहे उससे संबंधित किसी भी खेल की जानकारी देने वहां पर नियुक्त किए जाए, क्योंकि हमें रूट लेवल पर जब मैदान पर एक बच्चा आता है तो वो उन चीजों को सीख कर नहीं आता, रूट लेवल पर वहां पर स्कूल में सीख कर आएगा, तो खेल मैदान स्टेडियम में उन कोच को आसानी हो जाएगी जो जिस खेल से संबंधित वो खेलना चाहता है।
0: सर, झांसी में खेल गतिविधियों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहते हैं?
1: झांसी का नाम खेलों में देश विदेशों पर अपना डंका बजा चुका है, और मैं अभी की जैसे कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं साथ साथ के लिए, कल एक केतन कुशवा जो कि एशिया कप में अंडर 18 कैप्टन बनने के बाद उसने इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया, तो मैं उसकी भी शुभकामनाएं पूरे झांसी वालों को देना चाहता हूं। उसी तरीके से यहां पर ज्योति सिंह है जो कि इंडिया कैप्टन है जूनियर की, और दद्दा ध्यानचंद और उनके सुपुत्र श्री अशोक ध्यानचंद जी, जमशेर खान, अजीज भाई साहब, तो ये सारे नामी खिलाड़ी देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, तो उसी की परंपरा पे यहाँ पर हॉकी में तो बढ़ चढ़कर बच्चे हिस्सा लेते हैं। दूसरे नंबर पर मैं खुद से बॉक्सिंग हूँ, यहाँ पर बॉक्सिंग में काफी बालक बालिकाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है।
0: सर, झांसी की धरती ने कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों को और आगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए विभाग क्या विशेष प्रयास कर रहा है?
1: जैसे कि खेल विभाग की योजना है, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट हॉस्टल की योजना होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने फिटनेस के माध्यम से, स्किल के माध्यम से सालाना उसके परीक्षाएं होती है जैसा कि, और उसके बाद वो बच्चा रहकर आवासित होकर छात्रावास में उसको निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, निशुल्क उसकी पढ़ाई होती है, निशुल्क उसका मेडिकल का, उपकरण का, तो तमाम सारी इस तरीके की योजनाएं खेल विभाग दे रहा है, जिससे बच्चे निशुल्क रहकर

0: वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम रोशन और अपने परिवार को
1: मतलब पसंदीदा खेलों को वो चुन सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, वहाँ पर उसी खेल खिलाड़ी को योजना के आधार पर, नियम के आधार पर अपना फॉर्म फिल करके अपना फिटनेस लेवल और स्किल लेवल पास करना होता है।
1: सर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की भूमि है, लेकिन खेल के मैदानों पर अभी भी लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम दिखती है। झांसी की बेटियों को एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती या बैडमिंटन जैसे खेलों में आगे लाने के लिए क्या विशेष पहल किए जा रहे हैं?
0: पहले से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगभग 5 साल हो चुके मैडम
1: जी,
0: तो कुछ सुधार हुआ है खिलाड़ियों के अंदर, बालिकाओं के अंदर भी एक उत्साह पैदा हुआ है, उनके अभिभावक भी कुछ खेलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा था, ज्योति सिंह है, एथलेटिक्स में शैली सिंह है, जिया यादव है, जो ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि एक भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हीं की देख रहे उसी उस पर परिपाटी पर चलते हुए। तो लड़कियां आ रही है, इमरोज खान अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड चैंपियन अभी बॉक्सिंग की बनकर आई है, तो उसको देखकर जैसे कि मेरे खुद के खेल में बॉक्सिंग में काफी लड़कियां उससे प्रभावित होकर बच्चे प्रशिक्षण के लिए आ रही है, एडमिशन ले रही है। तमाम ऐसे खेलों में बच्चे बढ़ चढ़कर काफी हिस्सा ले रही है,
1: मतलब लड़कियां एडमिशन ले
0: रही है। जी जी, सरकार उन योजनाओं पर लड़कियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं काफी खेलों के अंदर।
1: सर, झांसी में हाल ही में आयोजित हुई व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में दिव्यांग खिलाड़ियों के जज्बों को पूरे शहर ने सराहा। झांसी में पैरा एथलेटिक्स और दिव्यांग खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए क्या खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं?
0: अभी पैरा एथलीट को पहले के मुकाबले काफी इसमें हिस्सेदारी मिल रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं व्हील चेयर क्रिकेट में। यहाँ की क्रिकेट की टीम काफी अच्छी है, जो कि देश विदेश और राष्ट्रीय स्तर पर काफी जगह मैच जीत कर आते हैं, यहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमारी भी मनसा है, इच्छा है कि जो भी ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी समाज के अंदर हैं, वो खेल मैदान से जुड़े। जो भी योजनाएं, हम हर संभव प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से कोई कंप्लेन होती है उसको आगे लेकर उसको कोई भी लाभ मिल सके खेल के प्रति, तो उनके प्रति हम हमेशा सचेत रहते हैं।
1: सर, मुख्यमंत्री जी ने झांसी में भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में एक नए मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। इस मिनी स्टेडियम का प्रोजेक्ट इस समय किस चरण में है और इससे शहर के खिलाड़ियों को क्या फायदा होगा?
0: जैसे कि उसकी नींव रखी गई है
1: जी,
0: और उसकी नींव रखने का कारण ये है कि झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड को उसका लाभ मिले।
1: अच्छा।
0: और इंस्टीट्यूट, रेलवे इंस्टीट्यूट में हमारे एक खेल प्रशिक्षण चलते हैं, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स हीरोज ग्राउंड में चलते हैं
1: जी।
0: तो जितने हमारे यहाँ पर मैदान होंगे उतने खिलाड़ियों की संख्या होगी, जितनी क्वांटिटी होगी उसी में से क्वालिटी निकल कर आएगी, और इसी से हमारे बुंदेलखंड का खेलों में विकास होगा, झांसी जनपद का नाम रोशन होगा।
1: नाम रोशन होगा
0: जी,
1: पूरी झांसी का नाम रोशन,
0: पूरी झांसी का नाम रोशन,
1: बुंदेलखंड का भी
0: जी जी।
1: सर, झांसी में डे नाइट रणजी ट्रॉफी या BCCI के अन्य बड़े स्तर के मैच देखना क्या भविष्य में संभव हो पाएगा? इसके लिए विभाग की क्या तैयारी है?
0: अभी BCCI का ऐसा कोई यहाँ पर अभी कोई ऐसा मैच की संभावना तो नहीं है, पर वर्तमान में जैसे कि यहाँ पर कुणाल यादव हैं, वो रणजी प्लेयर हैं जो वर्तमान में खेल रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों की जो प्रयास रहेगा उनको देखते हुए, जैसा BCCI ने गर्ल्स के लिए और मेंस के लिए जो आगे खेल आ रहे हैं क्रिकेट की बोर्ड ट्रॉफीज हो गई, तो कुछ मैचेस यहाँ पर मिलेंगे, तो संभवतः हम लोग भी रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ पर करा सकते हैं। हाँ जी,
1: ब्रॉडकास्ट हम देख सकते हैं। सर, जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं जिनमें कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल आदि जैसे स्पर्धाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर विभाग का क्या सालाना कैलेंडर है?
0: इसमें ग्रामीण खेलों को देखते हुए, जैसे अभी हमारे यहाँ पर सांसद स्पर्धा हुई थी, ब्लॉक स्तर पर खेल होते हैं, नेहरू युवा कल्याण की केंद्र इसके अंतर्गत ये लोग हमसे आके यहाँ पर वहाँ से एक रिजल्ट के रूप में कुछ बच्चों को लेकर स्टेडियम से जोड़ते हैं, तो हम इनकी प्रतिस्पर्धा कराते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस स्पर्धा में यहाँ पर जो भी टैलेंट होता है उसको हम प्रशिक्षण ध्यानचंद स्टेडियम में या स्थानीय कोई भी अन्य जहाँ पर विभाग का स्टेडियम होता है उसको आगे लेकर उसकी हर जरूरतों को देखते हुए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये ऐसे खेल है इसमें कुछ जमीन के अंदर करा सकते हैं, जैसे कि हॉकी है, क्रिकेट है, उनके लिए बड़े मैदान है, कबड्डी है, थोड़ी जगह चाहिए, और ये हमारे प्राचीन खेल है, इनको मैं आगे लेने की प्रायोरिटी होती है, और सरकार भी इसी की मंशा पे है कि हमारे प्राचीन खेलों को भूला ना जाए, उनको आगे लाया जाए।
1: जी सर, आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन खेल में माहिर बच्चों की मदद के लिए विभाग के पास क्या योजनाएं हैं? उन्हें डाइट,

0: किट और कोच की सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध कराई जा रही हैं?
1: जैसा खिलाड़ी कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आता है
0: जी,
1: वहाँ पर सरकार की योजना के अंतर्गत जो भी मानक के अनुसार जो भी उसकी प्राइज मनी होती है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं वहाँ पर अलग है। जैसे कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए देती है।
0: okay.
1: उसके बाद जो निचले स्तर के खेल है उनमें भी प्राइज मनी दी जाती है, जैसे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर लेवल पर 1 लाख रुपए उसको गोल्ड मेडल पर मिल रहे हैं, सिल्वर मेडल पर 50,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी मेरे काफी स्टूडेंट को ध्यानचंद स्टेडियम के प्राइज मनी उनको मिली है। स्कूल लेवल पर जीतते हैं वहां पर भी उनको काफी प्राइज मिल रहे हैं। उसके साथ उनको किट का और डाइट का और स्थानीय स्तर पर मैडम बताना चाहूंगा प्रोत्साहन समिति के माध्यम से जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं तो वो भी काफी बच्चों को यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, उसका लाभ मिलता है।
0: सर, झांसी में खेल विकास को लेकर आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं?
1: मेरी भविष्य की योजनाएं, हमारी चर्चाएं होती रहती है आरएस साहब के साथ मिलकर
0: जी,
1: जिलाधिकारी महोदय के साथ कभी मुलाकात में जब बातें होती हैं तो हम उनको अपनी बातें बताते हैं, सीडीओ सर के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है मैडम,
0: बुंदेलखंड में
1: जी, बुंदेलखंड में बस एक थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि झांसी और बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ, अब थोड़ा सा ऊपर आया, सरकार की योजनाओं के अंतर्गत इसको ऊपर लाया जा रहा है, सरकार की प्रायोरिटी है। तो जब सारी चीजें योजनाएं का लाभ यहाँ पर मिलेगा तो उस तरीके से हमारे खेलों के भी योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिल रहा है। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ टैलेंट की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है।
0: जब
1: माता पिता उनके अभिभावक खेल से लेकर बच्चे की उंगली पकड़कर जैसे स्कूल में लेके जाते हैं, उस तरीके जिस दिन खेल मैदान की तरफ लाएंगे तो हमारा निश्चित हमारा काम आसान हो जाता है। और वहां पर लाकर भी उस बच्चे से संबंधित, उस कोच से संबंधित, वहां पर उन बच्चों का फीडबैक लिया जाए, वो जिस तरीके से एक पीटीएम होती है उस तरीके से पूछा जाए कि आपके यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, बच्चा मेरा सीख रहा है, तो वही बात आ जाती है, आप जागरूक होंगे तो हम खेलों को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, उसमें कोच का काम थोड़ा आसान हो जाता है।
0: मतलब आपका ये कहना है पेरेंट्स को भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा ये खेल रहा है, इसमें वो अच्छा खेल रहा है, तो हम भी उसको प्रोत्साहित करें, उसको आगे लेकर,
1: क्योंकि एक ये कोऑर्डिनेशन है, माता पिता हमारे पास में लेकर आए, मेरा इंटरेस्ट काफी है, बच्चा टैलेंटेड, माता पिता का नहीं है तो फिर दिक्कतें आती है, माता पिता का है मेरा नहीं है बच्चे का नहीं है, तीनों का कोऑर्डिनेशन एक जरूरी है। और ये जब ही होगा जब हम तीनों लोग एक साथ मैदान पर।
0: सही बात है सर। अब एक आखिरी सवाल, खेल अधिकारी के रूप में आपका व्यक्तिगत लक्ष्य या सपना क्या है जिसे आप झांसी के खेल जगत के लिए पूरा होते देखना चाहते हैं?
1: मेरा व्यक्तिगत सपना यही है और कोशिश भी है जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ
0: जी,
1: कि यहाँ पर बच्चे खिलाड़ी या बालक या बालिका कोई भी आए
0: जी,
1: और उस तरीके से यहाँ पर खेलने जो आ रहे हैं उन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हम दे सकें जिससे कोई भी बच्चा खेल की सुविधाओं के अभाव में यहाँ से पलायन न करे, ठीक दूसरी जगह न जाए। जिस तरीके से मैं कोचिंग के माध्यम से बच्चों को आगे लाभ देना चाहता हूँ, उसी तरीके से अगर उनके पेरेंट्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बच्चों को एक विश्वास के साथ में हमारे साथ खेल की दुनिया में लेकर आएंगे तो यहाँ पर झांसी में खेलों का नाम पूरे देश में, जिस तरीके से हॉकी एक खेल का नाम चल रहा है, तो हम सभी खेलों को यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर देश का नाम रोशन कराएंगे।
0: सर, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के इस विशेष मौके पर आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण व व्यावहारिक जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भेंटवार्ता झांसी में खेल विकास और भविष्य की योजनाएं, इस विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार बॉक्सिंग उप क्रीड़ा अधिकारी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी से लक्ष्मी माहौर की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खोलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये भक्ति रचना सुनी। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। बच्चे खेल खेलते हैं तो खेल खेलना क्यों जरूरी है बच्चों का, इस पर हम बात करते हैं। बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। खेल बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के सभी क्षेत्रों में सीखने के सशक्त अवसर प्रदान करता है। खेल के माध्यम से बच्चों के साथ संबंध बनाते हैं, नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, लचीलापन विकसित करते हैं, साथ ही रिश्तों और सामाजिक चुनौतियां का भी सामना करता है। और इस खेल में खेलते समय जब बच्चे खेलते हैं आपस में, तो खेलते समय बच्चे सुरक्षित आपस में महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए खेलते हैं। सामान्य तौर पर खेल बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता को व्यक्त करने और विकसित करने का मंच प्रदान करता है, जो आज की तकनीक आधारित और जो विकसित दुनिया है उसको महत्वपूर्ण खोज के अनुसार बच्चे अपना जीवन अपना लेते हैं। लीजिए, आप सुनिए ये भक्ति रचना।

ये भक्ति रचना आप सुन रहे हैं हरिओम शरण के स्वर में। इसके साथ ही आज का विविधा का ये अंक समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने ध्वनि मित्र राजेश शर्मा को प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सबरे किसान भैया बहनों को और पंच भैयन को अपने भैया पवन
1: और दीप्ति बहन को
0: नमस्कार। हाँ तो दीप्ति
1: और पवन भैया देखो केंद्र सरकार की सफल कार्यकाल और विभिन्न जो है विकास नीतियां हैं उनके अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक मानूंगा वो है।
0: बिल्कुल दीप्ति।
1: और 24 फरवरी 2019 को जो शुरू हुई थी जो योजना आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लाने वित्तीय स्थिरता और सम्मान को सबसे मजबूत आधार बन चुकी है।
0: सही बात करी दीप्ति बहन अपन ने। कैसे इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक यानी कि मार्च 2026 में जारी करी गयी 22वीं किस्त देश के लगभग करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में लगभग 4.27 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा की राशि सीधी ट्रांसफर करी जा चुकी है।
1: बिल्कुल। और ई नगर सहायता को उपयोग किसान मुख्य रूप से बीज है, खाद है, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के रखरखाव के लाने करत है और इसे फसल चक्र के समय किसानों को पैसा की तंगी नहीं
0: होता है। बिल्कुल बहन। और सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों के लाने सीधी किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ो है। इसके तहत किसानों को बेहद कम ब्याज दर पे और भैया अच्छो कृषि के लाने ऋण मिल जाते और आसानी से उपलब्ध जो कराओ जाते हैं वो।
1: बिल्कुल। और पवन भैया देखो अपन बतकाओ तो और करें कहानी, पहले सुन लें जी संदेश।
0: बिल्कुल दीप्ति बहन। तो देखो संदेश तो अपन किसान भैया को बाद में सुनवा है लेकिन संदेशन की पहले देखो अपन और कछु ना बतकाओ कर लो जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो दीप्ति बहन जैसो की अपन जाना था कि प्रत्येक गुरुवार को अपन देखो अपनी किसान भैया के लाने देखो अपनो किसानन से जुड़ो अपनो कार्यक्रम लेके आउते हैं हेलो किसान। तो हेलो किसान में अपन जानते हैं कि हर गुरुवार को प्रत्येक गुरुवार को कोनो न कोनो नव विषय अपने किसान भैया के लाने लेके आउते हैं खेती बाड़ी से जुड़ो। तो दीप्ति बहन आज अपन के का कछु सुनवाई वाली हूँ।
1: बिल्कुल देखो हेलो किसान में आज को विषय है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अतीक अहमद जो मृदा वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से हैं।
0: हाँ।
1: तो किसान भैया कायनी अपन देखो फोन इन कार्यक्रम सुने पहले।
0: बिल्कुल दीप्ति बहन सही बात करी अपन ने। तो सुनत है जो उमदासो कार्यक्रम हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम।

0: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम सुनने वाले सबरे किसान भैया बहन को और पंच भैया को अपने भैया पवन
1: और दीप्ति बहन को
0: नमस्कार। हाँ तो दीप्ति बहन देखो जैसे ही अपनो समय भाव और देखो अपन लेके आ गए हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम।
1: और पवन भैया देखो आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और विशेषज्ञ हैं यहीं पे डॉक्टर अतीक अहमद जो मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र झांसी से।
0: तो देखो दीप्ति बहन जावा जी फोन की घंटी और उठाते हैं किसान भैया को फोन।
2: हेलो
0: हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार।
2: नमस्ते सर जी।
0: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी। मनोज नामदेव
0: जी अपन को हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसो कि हम जानते हैं कि अपन देखो अपने हेलो किसान के नियमित श्रोता है और अपन फोन करा तो हमें बहुत ही नोनो लगत अच्छा लगत है आपसे बात कह करके। मनोज नामदेव जी का चल रहा है इस समय अपनी खेती बाड़ी में?
2: इस समय खेती बाड़ी में सर कुछ नहीं चल रहा है, खेत बिल्कुल खाली है। और अब

0: मूंग की खेती करी थी तो बिल्कुल साफ सफाई हो गई खेत की और बस अब जो सोच रहा है एक आध पाई माई बस जाए सुबह सफाई में कुछ बोनी मोनी भी फॉर्म है
1: बारिश हो जाए तो अपन बुआई करें। जैसे कि अपन को हम बता देवे नामदेव जी कि आज अपन ने हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपना विषय रखो है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आज अपन के बीच में विशेषज्ञ है डॉक्टर अतीक अहमद जी जो कि मृदा वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र झांसी से। तो अपन का कछु पूछबो चाहो और अपने खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत अपनी खेती के बारे में तो डॉक्टर साहब से बात करो।
0: तो सर जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो खेत में हमारे जो किसान भाई या हम भी कूड़ा कचरा अगर अपन जैसे जला देते हैं खेत में तो खेत में जो पोषण आहार रहता है जो खेत का वो नष्ट हो जाता है कि नहीं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया कि जब हमारी धान की फसल या गेहूं की फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं हमारे
0: जी बिल्कुल सर
2: उनको हम कैसे उसको खेत पे मिलाएं। आपने बोला कि अगर हम आग लगा देते हैं तो उससे क्या हमारे नुकसान है और उसको हम कैसे उसका समाधान करें कि हमको आग न लगाना पड़े। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहला जो काम है आपका पहली बात तो खेत पे आग नहीं लगाना है ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो खेत में बहुत सारे ऐसे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लैब में पता चलता है वो जब आग लगाते हैं तो वो पूरे जल के मर जाते हैं और वही हमारे ये आपका रेजिड्यूज हैं जो डंठल है उनको सड़ाने का काम करते हैं। तो पहली बात तो आग नहीं लगाना है। दूसरा इसका समाधान ये है कि आप खेत की गहरी जुताई कर दें। दूसरी चीज है वेस्ट डिकम्पोजर आता है ये 20 रुपए एक बोतल मिलती है सरकारी है इसको 200 लीटर एक का ड्रम लेना है आपको उसमें ये दवा जो हम बता रहे हैं पूसा वेस्ट डिकम्पोजर उसको उसमें डालना है 200 लीटर पानी भर देना है फिर उसके ऊपर दवा डालना है आप और 2 किलोग्राम गुड़ 2 किलोग्राम बेसन
0: ठीक है
2: इनको उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद सुबह शाम डंडे की सहायता से 6 से 7 दिन उसको हिला देना है घड़ी के अनुसार फिर उल्टे घड़ी के अनुसार उसको शाम के सुबह जब भी पहुंचे उसको हिला दिया आपने। हिलाने के बाद 7 दिन में आपकी दवा बन के तैयार हो जाएगी। जब खेत में आप पानी दें पानी देने के बाद वही बेस्ट डिकम्पोजर जो तैयार बेस्ट डिकम्पोजर ये 1 एकड़ फसल के लिए आप 200 लीटर आपका पर्याप्त है मेड़ के पास आप रख दें। रखने के बाद उसको उसमें एक टोटी लगा दें वो धीरे धीरे जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां पे वो आपकी दवा पहुंच जाएगी और 15 से 20 दिन में ही आपकी वो पूरे डंठल जो आपके रेजिड्यूज हैं वो सब सड़ के खाद के रूप में मिल जाएंगे जिससे हमारी जमीन भी उपजाऊ होगी की समस्या भी खत्म हो जाएगी और उत्पादन में भी हमारी वृद्धि होगी।
0: बिल्कुल सर आपने अमूल्य समय दिया और महत्वपूर्ण दी जानकारी आपको मेरी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि और भी किसानों को आप ये जानकारी प्रदान करें।
1: जैसे कि डॉक्टर साहब किसान भैया पूछ रहे थे कि हम डंठल हमें जला दें जला दें तो उनसे कागज नुकसान हो जाए। जैसे कि अपन ने बताओ है अच्छी बात है कि हमारे किसान जो भैया फोन कर रहे उनकी समझ में आया कि अगर अपन डंठल नहीं जला रहे तो उनसे अपन को कछु फायदा हो जाता है। जैसे कि अपन ने जो बताओ है जो अपन ने प्रक्रिया बताई बनावे की दवाई बनावे की प्रक्रिया बताई कैसे अपन को दवाई बनाने हैं कितने दिन में अपनी तैयार हो जाए तो का तरीका से अपन को डाल ले। डॉक्टर साहब एक चीज और हम अपन से पूछो चाहे कि जैसे कि खेत बचाओ अभियान इस समय चल रहा
2: जी
1: तो इसमें अपन की का कछु भूमिका है।
2: खेत बचाओ अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण ये अभियान है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे हम देखते हैं कि हमारी दिन ब दिन हमारी मृदा की उर्वर शक्ति घटती जा रही है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब देखो बतकाओ बनाने और करें लेकिन किसान भैया को फोन आ रहा
2: बिल्कुल
1: कर ले उनसे बतकाओ। हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में स्वागत है भैया। नमस्कार।
3: नमस्कार भाई साहब।
1: का नाम भैया अपन को कहाँ से अपन बोल रहे?
3: हरप्रसाद कुशवाहा सकरार से।
1: हर प्रसाद कुशवाहा जी सकरार से। तो हर प्रसाद कुशवाहा जी देखो अपन ने फोन करो हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में अपन को बहुत बहुत स्वागत है और इस समय का अपनो चल रहा खेती बाड़ी को काम?
3: खेती बाड़ी तो अभी हमारी डली है हमें बीज डालना है धान का।
1: अच्छा।
3: नर्सरी बोना है।
1: अच्छा धान की बुआई करने अपन को धान की तैयारी में अपन लगे हो नर्सरी की बुआई अपन को करने। जैसे कि हम अपन को बता देवे कि आज अपनो हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में जो अपन ने आज विषय रखो है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और आज अपन के बीच में जो विशेषज्ञ है वे है डॉक्टर अतीक अहमद जो की मृदा वैज्ञानिक है जो कि अपने खेत की जो मिट्टी होते है उसकी का कुछ समस्या रहते है उसे अपन को कैसे समाधान पाने हैं उसके बारे में अपन को बताओ जे तो अपन पूछ सका हो अपनी खेती बाड़ी से संबंधी जो भी अपनी समस्या हो। तो अगली आवाज हमारे डॉक्टर साहब की रहे तो अपन उनसे बतकाओ करो अपनी समस्या और पाओ अपनी समस्या को समाधान।
3: नमस्कार
2: नमस्कार किसान भाई।
3: सर मैंने अभी 3 साल

0: साल पहले उसमें वो चलवाया था, गहरा वाला ट्रैक्टर पिलाऊ
1: चलाए थे। जी जी।
0: तो उसमें दो साल से मैं फसल ले रहा हूँ धान की, इस बार भी नर्सरी डाल रही है बस दो चार दिन में।
1: ठीक है,
0: अभी जांच हो सकती है उसकी जमीन।
1: आपने मिट्टी की जांच के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसान भाई जैसा कि आपने बताया कि हमको धान की नर्सरी लगाना है, खेत पे धान की रोपाई करना है, तो हमको मिट्टी की जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, हमें लग रहा है कि आप काफी जागरूक किसान हैं, तो इसमें आप अभी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, समय है आपके पास मिट्टी की जांच कराने के लिए। और मिट्टी की जांच कराने से आपको मृदा का स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे किन किन पोषक तत्वों की कमी है। मुख्य रूप से हमारे 12 मुख्य पोषक तत्वों की जांच होती है। उन 12 मुख्य पोषक तत्वों में हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जीवांश कार्बन की मात्रा और PHEC और सल्फर, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। इनकी अगर 12 पोषक तत्वों की आप जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन से पोषक तत्वों की कमी है।
0: जैसे हमने 4 साल पहले करवाई थी जांच।
1: अच्छा, ठीक है, आपने 4 साल पहले जांच कराई थी। वैसे हर 3 साल में एक बार मृदा की जांच करा लेना चाहिए आपको। और मृदा की जांच कराने के लिए जो भी नजदीकी आपके पास ब्लॉक लेवल पे, आपका जिला लेवल पे, कृषि विश्वविद्यालय में, आपके कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ भी आपको नजदीकी मिले वहाँ से आप मृदा की जांच करा लें। मृदा की जांच कराने के लिए अगर आप नमूना लेने की विधि भी अगर आप जानकारी ना हो तो हम वो भी आपको बता सकते हैं।
0: जानकारी है जी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलो भैया, अपन ने हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में फोन करो, अपन को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपनी समस्या आती हो सकता डॉक्टर साहब ने अपनी की समस्या को समाधान कर दो हुए। जैसे कि डॉक्टर साहब अपन बतकाव कर रहे थे कि शुरुआत में अपन ने बात करी थी कि जला दे जो अवशेष होते हैं।
1: जी, जी, जी,
2: तो उनके बारे में जैसो कि अपन बता रहे थे कि जो अपनो अभियान चल रहा, तो इनमें अपन की का कछु भूमिका है?
1: देखिए, जो आपका ये मिट्टी बचाओ अभियान कार्यक्रम जो चल रहा है, ये गांव-गांव लेवल पे चल रहा है। इसमें हमारे सभी किसान भाइयों को जागरूक किया जा रहा है, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं।
2: जी,
1: जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर लगातार यूरिया, DAP जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते जाएंगे तो हमारी मृदा का उर्वरा शक्ति दिन में दिन घटती जाएगी। तो उसका समाधान करने के लिए हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अभी इस समय आप ढैचा, सनहै, मूंग, उर्द हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, जिससे हमारे मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छी बात अपन ने बताई। तो ई किला ने हमारे किसान भैया ने कुछ समय की निर्धारित है का हमारे किसान भैया ने कब सनई ढैचा की बुआई करें, और बुआई करने के बाद कितने दिन बाद अपन को पलटने हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये आपका जो ढैचा है, सनहै है, ये 40 दिन के अंदर आपको पलटाई करना है। अभी भी जो किसान भाई उर्द मूंग की फसल लेंगे या तिल मूंगफली लेंगे, उनके पास अभी भी पर्याप्त समय है। अगर उन्होंने नहीं बोया है तो वो अभी भी बो दें, 30 से 40 दिन के बीच में उसको पलटाई कर दें, फूल आने से पहले उसकी पलटाई कर दें। एक हेक्टेयर में 30 से 40 किलोग्राम बीज लगता है ढैचा का बुआई के लिए। इसको मिट्टी में पलटने के बाद उसमें नमी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नमी पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो सड़ जाएगी।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, सनई ढैचा की जो हमारे किसान भैया ने पलटाई करा थे, जो अपन बता रहे 30 से 40 दिन के बीच में, तो डॉक्टर साहब इससे हमारे किसान भैया को जो DAP यूरिया हमारे किसान भैया ने अपने खेतन में डाला था, तो का हद तक उसे अपन को राहत मिल जाते?
1: अगर आपने ग्रीन मैन्यूरिंग का प्रयोग किया है तो उसमें ये समझिए कि एक हेक्टेयर में 60 से 80 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन हमको फ्री में मिल जाती है।
2: जी,
1: और हमारे गेहूं के लिए चाहिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन या 120 किलोग्राम नाइट्रोजन।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो लगभग 60% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन तो हमको फ्री में ग्रीन मैन्यूरिंग से मिल गई।
2: जी।
1: तो एक तो हमारी खाद कम लगी, दूसरी चीज जब वो खेत में मिल जाएगी तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल,
1: जब खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी।
2: जी,
1: और जब जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे जो मिट्टी है वो उपजाऊ होगी।
2: जी,
1: और उत्पादन भी हमारा 15 से 20% तक उत्पादन की भी वृद्धि हो जाती है।
2: बहुत अच्छी डॉक्टर साहब अपन ने बात बताई। हमारे किसान भैया ने सनई ढैचा की बुआई करवे, और जब बुआई करें तो जो ध्यान रखवे कि अपन को जो रासायनिक खाद है उनसे अपन को दूरी मिल सके थे, तो सनई ढैचा की विशेष तौर पर हमारे किसान भैया ने बुआई कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, क्या धान या अन्य खरीफ फसलों की बुवाई या रोपाई के समय बायो फर्टिलाइजर जैसे पीएसबी है या राइजोबियम कल्चर है, तो इसका प्रयोग मिट्टी की सेहत और फसल की लागत को कम करने में मददगार हो सकता है? इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है डॉक्टर साहब?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे जो भी फसल

0: उससे पहले बीज उपचार करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: अगर हमने बीज उपचार कर दिया है तो हमारे रोग वहीं आधे से 50% से ज्यादा रोग हमारे वहीं नियंत्रण किए जा सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि दलहनी फसल अभी जो हमारे किसान भाई खरीफ में उर्द है, मूंग है, मूंगफली है,
1: हाँ, तेल है।
0: तो ये जो फसल आप बोएंगे तो खासतौर से जो दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम कल्चर का बीज उपचार करें
1: जी।
0: और इसका प्रयोग विधि जो है 10 किलोग्राम बीज के लिए एक पैकेट हमारा 200 ग्राम का पैकेट पर्याप्त है।
1: बिल्कुल उपचारित करके बोना है।
0: बीज उपचारित करके बोना है। तीसरी चीज ये है कि इसमें जब बीज का उपचार करें तो उसका 200 ग्राम का पैकेट लें, 50 ग्राम गुड़, उसको सैलरी बना लें। अगर गुड़ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो किसी भी होटल से रसगुल्ले का सीरा, जलेबी का सीरा अगर ये मिल जाता है तो 50 ग्राम सीरा ले लें। और बीज के ऊपर पहले बायो फर्टिलाइजर हमारे जैव उर्वरक को छिड़क के डाल दें, फिर इसके बाद उसमें ये सीरा जो आपका बताया रसगुल्ला या जलेबी का, इसको आप डाल के और हाथ के माध्यम से उसको तब तक लेपित करते रहें जब तक वो पूरा सीट के ऊपर चिपक न जाए। जैसे बीज के ऊपर वो चिपक जाएगा तो करीब आधा घंटा एक घंटे के बीच में वो सब छायेदार स्थान पे उसको सुखा लें
1: जी।
0: सुखाने के बाद बुआई करें। जब आप बुआई करेंगे तो इसमें हमारा जो बीज जब जमता है
1: जी,
0: तो जब रूट निकलती है तो उसके साथ ये हमारे इसमें, क्योंकि एक ग्राम सॉइल में लगभग 10 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, ये सब उस रूट के अंदर एंट्री कर जाते हैं, पेनिट्रेट हो जाते हैं
1: जी।
0: फिर वो रूट्स का जो गांठें, जो आपने देखा होगा कि कभी जब जड़ उखाड़ते हैं चने की और
1: जी,
0: तो छोटी छोटी गांठें मिलती हैं, ये वही गांठें हैं, वो डेवलप करती हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में गांठें डेवलप होंगी उतना ही ज्यादा हमारा पौधा स्वस्थ होगा। तो ये करें। और साथ में एक चीज और हम बताएंगे कि जब भी बायो फर्टिलाइजर लेने जाएं
1: जी,
0: तो उस समय सावधानियां जरूर बरतें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखते हैं हमारे अगले किसान कौन है, हमसे जो बात करना चाह रहे हैं। हेलो, फोनिंग कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत है। कौन भैया बोल रहे हैं? भैया अपना नाम और गांव का नाम बताओ।
2: महेंद्र सिंह नाम है।
1: हाँ महेंद्र सिंह, कौन गांव से बोल रहे हैं?
2: ग्राम बराठा से।
1: बराठा से बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी अपन को फोनिंग कार्यक्रम में। महेंद्र जी देखो, हमारे जो फोनिंग कार्यक्रम है उनको विषय है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और हमारे डॉक्टर भैया है डॉक्टर अतीक अहमद जो मृदा वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र से। तो किसान भैया पूछो अपनों का प्रश्न है डॉक्टर भैया से।
2: कि अभी खेत के लाने जो है
1: अच्छा खेत के लाने अपन ने बीज डालने हैं अपन को,
2: तो धान की छिले बनवा लेंगे, ऊंचरा है
1: करें। बिल्कुल, कैसे तैयारी करें डॉक्टर साहब के धान की क्यारी
0: जी? आपको नमस्कार। आपका जो सवाल है कि धान की खेत की तैयारी करते समय हम मृदा की में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, आपने बताया कि हमारी जमीन उफरा हो चुकी है, उफरा है, जिसके उत्पादन आपका कम है। महन जी हम आपको बताएं कि जो जमीन हमारी उफरा क्यों होती है, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि आपने जमीन बीमार कर दिया है, और ये उफरा जमीन तब हुई जब आप में जीवांश कार्बन की मात्रा घटी और आपके साल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो जमीन का पीएच हमारा 7.5 जो होना चाहिए तो बढ़ के 8.5-9.5 पहुंच जाता है। इस वजह से हमारी जमीन उफरा होने लगती है और उसका उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका समाधान करने के लिए आप सबसे पहले उसके दो उपाय हैं कि तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करें, दूसरा है उसमें पानी भर दें। पानी भरने से हमारी जो ऊपर के साल्ट है, जो उफरा हो का मतलब आप ये समझिए कि हमारी खेत जो है नमक की तरह हो गई, दिन में वो नमक की तरह चमकती है। तो जो हमारे साल्ट हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये पानी आप भर देंगे तो पानी भरने से वो जो साल्ट हैं वो लीचिंग के माध्यम से लीच डाउन होकर रूट जोन के नीचे चले जाएंगे। जो हमारे सॉइल का पीएच जो 8.5 था वो धीरे धीरे घट के 7.5 के नीचे पहुंच जाएंगे, फिर किसान भाई उस पर खेती कर सकते हैं। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद खेत पे प्रयोग करें। अगर हमारे मृदा का जीवांश कार्बन 0.2 या 0.3 से कम है तो 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें गोबर की खाद मिलाएं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से कि धान की फसल में मैं जो ऊसर भूमि होती है तो उसको हम जीवांश उसमें कैसे बढ़ाएं। और डॉक्टर साहब, जैसे अपने बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड की मृदाओं में जीवांश कार्बन की मात्रा दिन पे दिन घटती जा रही है
0: जी।
1: इसको बढ़ाने के लिए और

0: उपाय भी है क्या?
1: हाँ, जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जीवांश कार्बन की मात्रा हमारा खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है
0: जी।
1: अगर जीवांश कार्बन हमारे खेत पे कम है तो हम कोई भी फसल हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं
0: जी।
1: तो इसका बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय है कि उसमें आप गोबर की खाद डालिए, सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, FYM डालें, केचुआ की खाद डालें, उसमें नाडेप कंपोस्ट की खाद अप्लाई करें, उसमें ग्रीन मैन्यूरिंग ढेंचा के प्रयोग करें। अभी किसान भाई हमसे पूछ रहे थे दूसरा हो गई, तो उसमें ढेंचा के अगर वो बुआई कर देते हैं, करके पलटाई कर देते हैं, तो जमीन हमारी उसरा से घट के वो फिर नीचे आपका पीएच आ जाएगा
0: जी।
1: तो उसरा के लिए सबसे बढ़िया, जिन किसान भाइयों की जमीन उसरा हो रही है उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो है हमारा ढेंचा की क्रॉप है। ढेंचा की क्रॉप बो के उसको फूल आने से पहले 40 दिन के पहले उसकी पलटाई करते
0: हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं और अगले हमारे किसान भाई कौन बात करना चाह रहे हैं। हेलो, फोन इन कार्यक्रम।
2: नमस्कार साहब। हाँ,
0: नमस्कार, कौन भैया बोल रहे? अपना नाम बताओ भैया।
2: कुशवाहा टेहरगा से बोल रहे हैं।
0: हाँ कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है अपन को फोन इन कार्यक्रम में।
2: हाँ,
0: और
2: सब बढ़िया है? और
0: सब बढ़िया है। कुशवाहा जी देखो, हमारे साथ हमारे डॉक्टर भैया हैं, डॉक्टर अतीक अहमद जी, और आज का विषय है किसान भैया खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो अपन को जो भी प्रश्न हो मृदा से संबंधित तो अपने डॉक्टर भैया से पूछिए जो विशेषज्ञ हैं।
2: डॉक्टर साहब, मृदा संबंधी जांच करवा चुके हैं हम
1: जी,
2: अभी रिजल्ट नहीं आया है उसका, तो वो कब तक आ जाएगा रिजल्ट?
1: अच्छा अच्छा, आपने मृदा की जाँच करवा ली है? आप
2: भेज दिया सैंपल।
1: अच्छा अच्छा, कहाँ पे आपने भेजा है सैंपल?
2: यही ब्लॉक में।
1: आप एक बार आप उनसे संपर्क कर लीजिए, मृदा की जांच कराने के उपरांत जब आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन जाए उसी के अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, साथ में जैविक खादों का जरूर प्रयोग करें।
2: जैविक में अदरक दे रहे हैं हम अभी
1: जी,
2: अदरक की खेती कर रहे हैं
1: जी।
2: कल बुवाई होगी हमारी।
1: अच्छा,
2: पूर्ण रूप से जैविक ही कर रहे हैं हम
1: जी जी। तो उसमें आप जैविक खाद में आप सड़ी हुई गोबर की खाद 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत पे डालें। और अगर आपके पास अभी कोई खेत खाली हो तो उसमें ढेंचा और सनहेम जरूर बो दें, जो भी सीड आपके पास उपलब्ध हो। अगर ढेंचा के सीड उपलब्ध हो तो ढेंचा बो दीजिए, अगर सनहेम है तो सनहेम बो दीजिए, नहीं तो आपके पास उर्द और मूंग का बीज पुराना पड़ा हो तो आप उसको भी खेत पे छिड़क के बो दीजिए। और बोने के बाद 30 से 40 दिन में जब फूल आने की स्थिति में हो जाए उसको हैरो के माध्यम से उसको काट के खेत पे मिला दीजिए, जिससे आपके जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और आपका जैविक भी आपका खेत हो जाएगा। तो रसायनों का प्रयोग आपको बहुत कम मात्रा में करना पड़ेगा।
2: नहीं, हम रसायन तो कर ही नहीं रहे हैं सर, का नाम करके हम परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत का नाम कर रहे हैं काम।
1: अच्छा अच्छा, प्राकृतिक खेती की तरफ आपका रुझान है, बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे किसान हमारे प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे हमारा रसायन की खपत भी कम होगी और बीमारियों से भी आप बचेंगे।
0: कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा कर रहे थे अपन की प्रश्न को उत्तर अपन को मिल गया हुई है, और फोन कर भी खिलाने, हमसे बतकाव कर भी खिलाने अपने प्रश्न जो अपन ने पूछे डॉक्टर भैया से, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
2: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब देखिए, अब अपन ने बताया इनको कि जी मृदा परीक्षण करा रहे हैं और अभी तक लेकिन इनको रिजल्ट नहीं आओ, पोषक तत्व प्रबंधन कैसे प्रयोग करें, और साथ ही देखो मृदा परीक्षण में मृदा नमूना लेते समय कौन कौन सी सावधानी अपन को बरतनी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे किसान भाई जब मृदा नमूना लेते हैं तो उनको जानकारी का अभाव होता है, वो गलतियां कर देते हैं
0: जी।
1: मिट्टी का नमूना अगर सही तरीके से आपने ले लिया है तो उसका रिजल्ट भी बहुत सही मिलेगा, अगर नमूना गलत है तो रिजल्ट भी गलत है। तो सबसे पहला जो सावधानी है वो है, जब आप किसान भाई खेत पे जाएं तो वहाँ देखें कि खेत पे हमारा कोई पेड़ तो नहीं लगा है
0: जी।
1: अगर खेत के अंदर कोई पेड़ लगा है तो वो जगह हमको छोड़नी है, जहाँ जहाँ उसकी पत्तियाँ गिर रही हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे जीवांश कार्बन की मात्रा, पत्तियाँ बार बार जब गिरती हैं और सड़ती हैं जिससे वो जीवांश कार्बन की मात्रा वहाँ बढ़ जाती, उस चीज को जरूर छोड़ दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, पे हम जो बात अपन की जारी रखें, लेकिन पहले हम किसान की फोन देखते हैं। हेलो, फोन इन कार्यक्रम, हेलो किसान में स्वागत है।
3: नमस्कार नमस्कार, अमृत सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: हाँ अमृत सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत अपन को स्वागत है फोन इन कार्यक्रम में
3: जी।
0: हाँ भैया बताओ, अपन की क्या समस्या है? आज को अपन के विषय है खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, तो बताओ किसान भैया अपन को जो भी प्रश्न हो, तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर भैया है, डॉक्टर अतीक अहमद जी।

0: हम डॉक्टर साहब, हम जो पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारी जमीन है तो उसको हम स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य कैसे रखें, का उसकी लाने में उपयोग करना पड़े।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। आपका सवाल है कि हमारे पास जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसका मृदा स्वास्थ्य को कैसे हम बढ़ाएं। जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मृदा स्वास्थ्य ही बहुत जरूरी है। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ अगर है तो हम बढ़िया से काम कर लेते हैं, इसी तरह मृदा का

0: है, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ अगर है तो हम बढ़िया से काम कर लेते हैं, इसी तरह मृदा का भी अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा। तो सबसे पहला जो काम है किसान भाई, आप अभी बरसात होने शुरुआत होने वाली है, तो आप अपने खेत की जो भी मेड़बंदी टूट गई हो, खेत की मेड़बंदी दुरुस्त करा लें, खेत में उसकी एक बार जुताई कर दें, अगर हो सके तो गहरी जुताई भी आप कर सकते हैं। इससे क्या है, जो बरसात का पानी होगा वो खेत पे ही रहेगा। दूसरी चीज है, हमारा जब खेत पे का पानी खेत पे रहेगा तो जो हमारी जमीन का पीएच बढ़ रहा है, उफरा हो रहा है, तो वो घट के वो थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि जो साल्ट है वो घुल के वो जमीन के नीचे पहुंच जाते हैं रूट जो। तो दूसरा को गहरी जुताई कर लें। तीसरा, उसमें 15 दिन पहले, बुआई से 15 दिन पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग कर लें। और चौथा, अगर आपका नहीं कुछ हो पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है, तो आप उसमें खाली जो जमीन पड़ी है उसमें अभी भी आप ढेंचा की बुआई कर दें। हाँ, ढेंचा, सनहेम, उर्द, मूंग, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भी उसकी खेत पे बुआई कर दें। ढेंचा के बीज आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई कर दें, और उर्द मूंग है आपका 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें, और फूल आने से पहले लगभग 35 से 40 दिन में आप उसको पलटाई कर दें खेत पे, और पानी भर दें, या बरसात होगी तो वो अपने आप सड़ जाएगी, जिससे आपका जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपकी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी।
1: अमृत कुशवाहा जी, आशा करते हैं अपन के प्रश्न को उत्तर मिल गया हुई है, और फोन करके खिलाने बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ आपसे एक और प्रश्न जरूर पूछेंगे कि मल्चिंग के प्रयोग के क्या क्या फायदे हैं?
0: आपने जो मल्चिंग की आपने चर्चा की
1: जी,
0: मल्चिंग एक हमारा मिट्टी सतह को किसी भी जैविक या अजैविक पदार्थ से ढकने को हम मल्चिंग कहते हैं
1: जी।
0: मल्चिंग में आपके जैसे भूसे का अवशेष, धान का अवशेष, सूखी पत्तियां, ढेंचा सनहम के अवशेष, गन्ने की पत्तियां, मूंगफली का भूसा, इन सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने से लाभ क्या है
1: जी?
0: सबसे पहला तो हमारा जो वाष्पीकरण होता है, जो पानी हमारा बुंदेलखंड में वैसे भी कहते हैं कि पानी की कमी
1: है जी,
0: तो लगभग 30 से 50% तक पानी का हमारा जो पानी उड़ जाता है फसल लेते समय, वो पानी कंजर्व हो जाता है हमारा
1: जी।
0: दूसरा है, सिंचाई कम करनी पड़ती है
1: जी।
0: खरपतवारों की जो वृद्धि है वो हमारे लगभग 60 से 90% तक हम लोग खरपतवारों को कम कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, आपने देखिए खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत तमाम आपने जानकारी दी कि मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, कैसे मिट्टी की जांच करें, कैसे उसके नमूने को लें, इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने किसानों की भी प्रश्नों की बहुत ही सरलता से उनके उत्तर दिए, उनका निदान किया प्रश्नों का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: और पवन भैया देखो जो है तो फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और हमारे किसान भैया ने देखो खूब ही फोन लगाए, और उन्होंने देखो अपनी जो भी समस्या आती मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी उनको देखो निदान पाओ।
3: दीप्ति बहन सही बात करी अपन ने, और आज को जो अपन ने विषय रखा तो खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर अतीक अहमद जो कि मृदा वैज्ञानिक थे कृषि विज्ञान केंद्र झांसी से। तो देखो दीप्ति बहन, यही तरीका से देखो अगले गुरुवार को फिर अपन नए विषय हुए वो लेके आए, तो अगले गुरुवार को हमारे किसान भैया हेलो किसान फोन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, उनमें जुड़ भी खिलाने हमारे किसान भैया ने समय को ध्यान रखें, और दीप्ति बहन फोन नंबर से भी हमारे किसान भैया को बता दो।
1: बिल्कुल देखो किसान भैया, फोन नंबर है 0510-232-0068, और देखो समय है दोपहर 2 बजे से लेके 2:30 तक, तो किसान भैया देखो ऐसे ही फोन करते रहो और हमसे हेलो किसान में जुड़े रहो।
3: और तो यही के संगे संगे अब अपने भैया पवन
1: और दीप्ति बहन को स्वीकार करो।
3: नमस्कार।

0: पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
1: परम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: और देखो पवन भैया, आप संदेशी के साथ ही हमारे देखो आज को कार्यक्रम इतना ही समाप्त होते हैं, तो उठाएं हमारे किसान भैया कागज और कलम और लिखें कार्यक्रम को पतो। कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा की निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड नंबर है 284128। एक ही साथ स्वीकार करो दीप्ति बहन और
7: पवन भैया की
6: नमस्कार।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था।

अभी किसान श्रोता सुन रहे थे अपना लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। श्रोताओं आप सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण और साथ ही सुनिए एक आवश्यक सूचना। पहले सुनिए एक आवश्यक सूचना। गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन। गृह मंत्रालय भारत सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करता है। आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा। अनुशंसा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 है। इस संबंध में वेबसाइट https://awards.gov.in के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना समाप्त हुई। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

फिल्म संगीत आज आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं संध्या 6:35 पर। कार्यक्रम होगा पुराने नगमे रात्रि 8:15 पर, और साथ ही आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी रात्रि 9:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा संध्या 7:31 पर, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर व प्रस्तुति सहयोग होगा लक्ष्मी माहौर का और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि और फिल्म का नाम था घराना। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में। गीत रचना है आनंद बख्शी की, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये थी आशा भोसले और लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था आए दिन बाहर के। नए पुराने गीत सुहाने इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की आवाज में। फिल्म का नाम है गोल।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के झांसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में जीने की राह फिल्म का ये गीत सुना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार उत्तम सिंह।

दिल तो पागल है। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। नए पुराने गीत सुहाने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से न्यूज ऑन AIR ऐप और FM 103 MHz पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत पैरेलाल और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

0: पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: चोर मचाए शोर, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। गीत रचना है इंद्रजीत सिंह तुलसी की और संगीत है रविंद्र जैन का।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की। डीजे कार्यक्रम के अंत में सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है अनीता। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनीता के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब समाप्त होता है। संध्या के 7:19 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केन्द्र से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
1: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
3: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

0: आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10

0: 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 58 लाख हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
2: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
1: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
3: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने दो बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ईपीएफ टाइप का सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और शासन स्तर से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको जल्दी संपन्न कराएंगे।
1: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: FM 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत सुनिए, शकुंतला सक्सेना और सखियों की आवाज में, ये देवी गीत।

0: अभी आपने ये देवी गीत सुना। गायक कलाकार थी शकुंतला सक्सेना और उनकी सहेलियां। आकाशवाणी के झांसी केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: लीजिए आप सुनिए रजनी अर्जरिया की आवाज में ये सोहर गीत। क्षमा कीजिए, रजनी अर्जरिया की आवाज में ये गारी।

0: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
1: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियां और व्यावहारिक अनुप्रयोग की विधियां बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम

0: कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे सच में भैया?
0: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए आप सुनिए ब्रजलता मिश्र की आवाज में ये गारी।

अभी आपने ब्रजलता मिश्र की आवाज में ये गारी सुनी। लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक और विवाह गारी। गायक कलाकार हैं हर प्रसाद कुशवाहा।

बुंदेली लोक गीतों के कार्यक्रम खुशबू माटिकी में आज के कलाकार थे शकुंतला सक्सेना, रजनी अर्जरिया, ब्रजलता मिश्र और हर प्रसाद कुशवाहा। इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। आइए सुनते हैं मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आनंद।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सामने सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सांसों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुन, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। द पेन ऑफ लविंग यू इज ऑलमोस्ट मोर देन आई कैन बेयर।
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना, कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करती हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी है।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज, कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अकुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
3: देख छोड़ना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
0: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
3: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
3: कब तक नहीं मानेगा, मैं इंतजार कर सकती हूँ।
0: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
3: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
3: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
0: तुम घंटी बजाओ, वेटर को बुलाओ।
3: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
0: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
3: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर यह मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है, और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: यहाँ तुम, वहाँ हम।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: मुझे देर हो रही है, चलो झरना।
2: कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी।
1: तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती?
2: अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है।
1: A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं, मुझे तो उससे नफरत है।
2: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए।
1: बेचारा कितने अरमान रखता है। देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊँगी।
2: अच्छा भी, चुप हो गई। पानी में रह के मगर मच्छ से बैर कौन करे।
1: मैं मगर हूँ,
2: यू सिली गर्ल।
1: लो वो आ गया तुम्हारे चेहरे का बंगला।
3: रामू
4: जी,
3: अनंत बाबू हैं?
4: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
3: अकेले?
4: जी नहीं, साथ में एक थी।
3: थी? नाम?
4: नाम तो मालूम नहीं, पर
3: ठीक है। अनंत जी आए तो कहना मैं आई थी।
4: जी अच्छा।
3: ओह झरना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
2: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
3: फिर मजाक।
2: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
3: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों रूठ कर, क्यों रूठ कर। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें भुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात है।

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम देते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूँ।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए मिर्जा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। I am home, रमे।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है।

0: राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुलमिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: चाहे दुनिया से सच्चाई उठ गई है वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो न रूप।
2: जी
1: मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो।
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए, तो मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम था ससुराल। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है मेरे लाल।

ये थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था मेरे लाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी नगमे इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से FM 103 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत है चित्रगुप्त का और फिल्म का नाम है जवक।

0: ये सदाबहार गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था जवाब।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक

0: नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओ, अब सुनिए पुराने नगमे कार्यक्रमों का ये शेष भाग। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बहुत पुराने गीतों को। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले की आवाज में, एचडी वर्मन के संगीत निर्देशन में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और फिल्म का नाम है काला पानी।

अभी आपने आशा भोसले की आवाज में काला पानी फिल्म का ये गीत सुना। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं कमर जलालावादी, संगीतकार ओपी नैयर और फिल्म का नाम है रागनी।

अभी आपने ये सदाबहार गीत सुना, फिल्म का नाम था रागनी। लीजिए आप सुनिए मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत दिया है नौशाद ने और फिल्म का नाम सावन।

मोहम्मद रफी और आशा भोस, क्षमा कीजिए, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ ही पुराने नगमों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक

0: उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी।

0: होगी पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
2: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल, मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे मुंबई से अनुप्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है फरमाइसी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है लक्ष्मी माहौर का और प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।

0: श्रोताओं, ढल चुकी है शाम और अब हम धीरे धीरे नींद की आगोश में समाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो कहते हैं ना कि रात को सोने से पहले यदि अपनी पसंद के गीतों को सुन लिया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। इसीलिए फिर एक बार हम पेश हुए हैं आपका पसंदीदा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो झांसी लेकर, जिसमें हम शामिल करते हैं अपने श्रोताओं के पसंदीदा गीतों को। मैं हूं लक्ष्मी माहौर और अब देखते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो झांसी में।
1: अच्छा सर, मैडम जी नमस्कार। सर
0: नमस्कार।
1: सर मैं ग्राम जरियाई जिला झांसी से बोल रहा हूँ, चिरगांव के पास है ये ग्राम जरियाई। सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? सर
0: जी सुनाई दे रही है।
1: मैं जो हूँ हेलो फरमाइश का नियम सोता हूँ, बल्कि झांसी आकाशवाणी पूरी सुनता हूँ। कितनी दूर बाहर की चर्ची हो तो बात अलग है
0: जी।
1: आपके 5:30 से ये है जो 11-10 बजे तक 10:30 तक प्रोग्राम चलता है, वो मैं पूरा

0: पूरा सुन पाऊंगा।
1: जी बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं। आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन आप बोल कौन रहे हैं?
0: मेरा नाम रमेश चंद्र बिसौरिया
1: जी,
0: और सर मैं ग्राम जरियाई से बोल रहा हूँ सर
1: जी।
0: आज मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ
1: जी, बताइए।
0: फिल्म आपा का है, मोहम्मद रफी ने गाया है। हम सड़क के लोगों से महिला वाले क्यों जलते हैं
1: जी, आप करते क्या हैं?
0: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं मेरी आपकी कई बार बात हो चुकी है सर। मैं सोशल वर्कर हूँ, जो पहुँच नहीं सकते हैं संबंधित अधिकारी के पास, बड़े सरकारी के पास, मैं उनको पहुँचाता हूँ और उनकी बात मैं रखता हूँ, उनका काम कराने की कोशिश करता हूँ सर। मेरा यही काम है सर।
1: अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि गर्मी के इस मौसम में आप हमारे सुनने वाले श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं?
0: आप, मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि बगैर अनावश्यक कार के, बगैर आप ये घर से बाहर ना निकले
1: जी।
0: और दूसरी बात ये है कि अगर निकलना बहुत ही जरूरी है तो कम से कम कान में तौलिया लगा के लपेट के ही निकले सर
1: जी।
0: और एक जो है पानी की बोतल अपने बैग में अवश्य ही रखे।
1: अच्छा,
0: ये तीन चार और एक नींबू जरूर रखने सर। नींबू से जो है ये मतलब पूरा लू का बचाव हो जाता है।
1: नींबू के साथ साथ प्याज से भी तो बचाव होता है?
0: हाँ सर, वही मतलब थोड़ा सा आप बोतल में थोड़ा नींबू डाल ले
1: जी,
0: बोतल रख ले अपने पास।
1: अच्छा अच्छा,
0: मतलब यही एक उपाय है सर। वैसे सर निकले ना तो 5 बजे तक, तो जहाँ तक हो सके, अगर कोई काम ना हो, अगर बहुत अति आवश्यक काम ना हो तो ना निकले।
1: सही बात है,
0: यही बात है सर। मैं अपनी पत्नी का नाम दे सकता हूँ?
1: हाँ बिल्कुल जी, लीजिए।
0: मेरी पत्नी का नाम है श्रीमती उषा रानी जसौरिया और मेरे नाती का नाम है बाप सिंह जसौरिया सर।
1: जी धन्यवाद, हम आपकी उस, हाँ बोलिए।
0: ये नाम मत काटिए सर, बाप सिंह का सर।
1: किसका नाम?
0: नाती का। अच्छा, नाती का नाम बाप सिंह जसौरिया है सर। मेरा नाम सर रमेश चंद्र जसौरिया है सर।
1: जी जी बिल्कुल नहीं कटेगा, आप हमारे पहले कॉलर हैं, आपका हम नाम जरूर सुन।
0: हाँ, एक मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं।
1: जी जी बताइए।
0: जब आपका ये हेलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू हुआ था
1: जी,
0: तो सर कॉल मेरा ही लगा था सर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे सबसे पहले श्रोता बने।
0: हाँ सर, सबसे पहले
1: हेलो झांसी के सबसे पहले कॉलर बने आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सबसे पहले कॉल करने के लिए। ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंदीदा फिल्म का ये गीत हमें कॉल करने के लिए।
0: जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते।
1: जी जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी में।
1: हाँ दीदी,
0: बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं कोतवा कटक छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं तीर्थ यात्रा कम करता हूँ दीदी, सवारी का चक्कर तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ। अभी 3 तारीख को आया हूँ चारों धाम से, तो उसके बाद अभी सितंबर और अगस्त के आसपास प्रोग्राम बनाया हूँ।
0: अच्छा, आप चारों धाम की यात्रा करके आए हैं?
1: हाँ दीदी, नेपाल भी था, मनोकामना भी था, मथुरा वृंदावन भी था, साथ में सवारी लेके आए थे दीदी।
0: अच्छा, तो चारों धाम में आप कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए?
1: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री।
0: अच्छा
1: हाँ, उसके बाद अपना ऋषिकेश, हरिद्वार और मथुरा वृंदावन था, नेपाल भी था,
0: अच्छा तो आपका सफर कैसा रहा इस गर्मी भरे मौसम में? आप चार धाम की यात्रा करने गए, थोड़ी बहुत सावधानी बरती होंगी आपने?
1: हाँ दीदी, सावधानी था, भीड़ बहुत था दीदी, इस टाइम चारों गुना भीड़ था, इस टाइम
0: अच्छा
1: ज्यादा था, इस टाइम सभी चारों धाम में भीड़ था बहुत,
0: चारों जगह जहाँ पे भी आप गए थे, जहाँ जहाँ आप गए थे वहाँ सब जगह भीड़ थी।
1: हाँ, केदारनाथ भी बहुत भीड़ था, बद्रीनाथ भी भीड़ था, यानी बद्रीनाथ में तो दीदी 4 किलोमीटर लंबा लाइन लगाना पड़ा दर्शन के लिए, तो माड़ा तक के।
0: अच्छा तो कोई, चलिए जैसे आपको पता है गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, और इस गर्मी में बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, तो बच्चे मतलब सब लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने भी जाते हैं, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को क्या सावधानियां बताना चाहेंगे, विशेष टिप्पणी, मतलब कि जो लोग घूमने जाएं तो अपने साथ क्या जरूरत की चीजें या सावधानी क्या करना चाहेंगे, मतलब आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई जानकारी बताना चाहेंगे आप?
1: श्रोता भाइयों से ही निवेदन है कि धूप में जा रहे हैं इसलिए कम से कम छाता का उपयोग भी करें, ठंडा में साइड में रहे, मुंह बांध के चले, ठंडा पानी पिए, है ना, तो ये तेल वगैरह ज्यादा ना खाएं, ठंडा पदार्थ है ले हरदम, साथ में दवाई का भी उपयोग करता रहे, ग्लूकोज भी लेता रहे, इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पीता रहे, है ना।
0: तो ये तो हम अपने शहर में भी कर सकते हैं, मतलब सफर के दौरान आप क्या विशेष सावधानियां बरत सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज अपने साथ जरूर रखें जो मतलब सफर में काम आए?
1: गर्मी में दीदी वही अपना छाता वगैरह है, काफ अगर रुमाल वगैरह बंद मान के चले, ज्यादा भीड़ में ना रहें, दूरी रहे, थोड़ा सावधानी टाइप में रहे, की ताकि शरीर को अच्छा ठंडा हवा मिलता रहे, ऐसा टाइप में ज्यादा गर्मी की जगह में ना रहे, अपना ग्लूकोज वगैरह ठंडा पानी लेके चले साथ में।
0: जी चलिए, अब आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: सुहाग का 18 बरस की तो होना चाहिए, अमिताभ बच्चन और रेखा जी कहने दीजिए।
0: ठीक है, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया हेलो झांसी में, आप हमारे दूसरे कॉलर। जी बताइए।
1: सुनिए दीदी।
0: जी बताइए।
1: इसका प्रसारण 2 रोज हो गया क्या दीदी? 9:30 को सोमवार, गुरुवार, 2 दिन हो गए ना?
0: हाँ जी, कल
1: पहले क्या गुरुवार को था?
0: जी ये कल प्रसारण होगा रात्रि 9:30।
1: हाँ कल तो गुरुवार है, उसके बाद एक प्रोग्राम सोमवार को भी प्रसारण होता
0: है, सोमवार को
1: दीजिए।
0: ठीक है, आपने हमें कॉल किया, हम आपकी फरमाइश का सुनवा रहे हैं आपको ये गीत, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में। बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: किस चीज की खेती करते हैं आप?
1: अभी फिलहाल मानसून बारिश आएगा तो धान लगाएंगे और अरहर।
0: गर्मियों में आप खेती करते होंगे, कुछ सावधानियां तो बरतते ही होंगे।
1: गर्मी में 2-3 महीने मतलब खेती नहीं करते, अप्रैल में गेहूं कटाई होता है उसके बाद खेत खाली रहता है।
0: अच्छा, तो अभी इस वक्त कोई खेती नहीं कर रहे आप?
1: नहीं, अभी सिर्फ खेत को तैयार कर रहे हैं, जोताई वगैरह, जैसे बारिश मानसून वगैरह आएगा फिर बुआई वगैरह काम करेंगे।
0: जी, तो मतलब आप खेती में मतलब खेत में काम करते करते हमारा कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी, और बहुत दिनों के बाद फोन किए हैं, लगभग 4 महीना हो गया है।
0: जी अच्छी बात है, आपने इतने दिनों बाद कॉल किया। कम से कम इस दौरान हमारे अन्य श्रोताओं को भी मौका मिला होगा हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने का। और हमारे कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: फोन इन कार्यक्रम ही सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें अपनी आवाज और पसंद के गीत सुन पाते हैं।
0: जी बिल्कुल, चलिए आप अपनी फरमाइश बताइए कि आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है दिल तो पागल है और गीत के बोल हैं कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना।
0: हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। आप और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बस अच्छे हैं और सभी साथी अच्छे रहे, यही कहना चाहेंगे।
0: हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो हेलो झांसी में आपका स्वागत है, बताइए कौन बोल रहे हैं।
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
0: ब्रज किशोर कुशवाहा बोल रहे हैं
1: जी। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं?
0: ग्राम गोंदन, जिला दतिया, एमपी।
1: अच्छा, आप दतिया से बोल रहे हैं?
0: हाँ
1: जी। बताइए क्या करते हैं आप?
0: जी, मोटर पंखा बनने का काम करते हैं।
1: अच्छा, तो उसके साथ साथ आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं?
0: हाँ,
1: किस माध्यम से सुनते हैं आप हमारे कार्यक्रम?
0: जी, ब्लूटूथ माध्यम।
1: कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे पसंदीदा लगता है कि हम ये तो रोज सुनना ही है, बस इसके अलावा, मतलब इसके सिवा हमारा चलेगा नहीं है?
0: हम जो कहते पहले तो रेडियो सुनना ही है।
1: हाँ हाँ,
0: सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं अपन को
1: जी।
0: रात के 11 बजे तक।
1: 11 बजे तक, अच्छी बात है कि आप हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं। कोई फेवरेट?
0: फेवरेट तो अपने जैसे हेलो झांसी है, एक लास्ट में भी आते गजल।
1: अच्छा,
0: सुगम संगीत
1: जी। फेवरेट हेलो झांसी इसलिए ताकि आप अपनी आवाज सुन सके, है ना?
0: हाँ।
1: चलिए बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे अपनी पसंद का, फरमाइश बताइए।
0: अपने तो टाइम देवा सेंगे तो फिर यही तो सुन लेंगे अपन।
1: तो आप फिल्म का नाम बताइए।
0: फिल्म में भ्रष्टाचार गाना है, तेरे नैना मेरे नैना से बात कर।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गीत। हमें
0: दोस्तों का नाम लेना चाहते थे।
1: जी जी बिल्कुल लीजिए, बताइए।
0: लोकेंद्र गुर्जर है बिड़ौरा से
1: जी,
0: मेहरबान नांगल साल गाँव से।
1: ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो झांसी में
0: जी।
1: बताइए कौन बोल रहे हैं आप?
0: जी मैं ग्राम सेमरी से बोल रहा हूँ, यशवंत सिंह यादव।
1: जी बताइए क्या करते हैं आप?
0: जी दुकानदारी करते हैं, ढाबा खोले।
1: तो उसी दौरान आप हमारा कार्यक्रम भी सुनते हैं, रेडियो चालू रहता है?
0: बराबर सुनते हैं, ढाबा भी खोले थे उससे पैसे सुनते हैं।
1: जी
0: तो वे 6 बजे चालू कर देते हैं और शाम को 11 बजे बंद होता है।
1: 6 बजे से कोई रेस्ट नहीं है बीच में? आप अपने लिए थोड़ा एक आध घंटा नहीं लेते हैं?
0: हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते, बेताब हो जाते हैं कार्यक्रम सुनने के लिए कि कब निकलना चाहिए कार्यक्रम।
1: ओ अच्छा, ये तो हमें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलिए आप अपनी फरमाइश बताइए।
0: जीने की राय, आने से उसकी आई बहार।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो
1: प्रोग्राम हेलो झांसी
0: जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में। बताइए कौन बोल रहे हैं?
1: पहली बार फोन कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। और
0: जी स्वागत है, आप हमारे कार्यक्रम में पहली बार फोन कर रहे हैं तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
1: जी विलासपुर से बोल रहा हूँ, मैडली गाँव खम्बाड़ा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से।
0: जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: रेडियो और टीवी के रिपेयरिंग का काम करते हैं मतलब।
0: अच्छा जी
1: जी, और आपके प्रोग्राम बड़ी प्रेम से सुनते हैं मैडम।
0: जी हमें तो जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इतनी दूर से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो काम करते करते
1: मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़े अच्छी तरह अच्छी तरह किसी सुन पाते मैडम का प्रोग्राम।
0: चलिए आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी मैडम जी, मजेदार फिल्म का गीत सुन रहा है, सागर से गहरा है प्यार हमारा।
0: ठीक है, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: सरवन कुशवाहा बोल रहे हैं चिरगांव से।
1: जी बताइए, क्या करते हैं आप?
0: पल्लेदारी करते हैं गल्ला मंडी में।
1: अच्छा जी, बताइए, हमारे कार्यक्रम सुनते हैं आप?
0: हाँ सर, पूरे गाना सुनते हैं आपके, यहाँ बहुत अच्छे आते हैं।
1: कौन सा आपका पसंदीदा कार्यक्रम है जो आप सुनते हैं?
0: हमको यही पसंद है, झांसी सुनाते हैं आप।
1: अच्छा, हेलो झांसी।
0: हेलो झांसी, सुनते हैं हम बराबर।
1: जी बताइए, आप अपनी फरमाइश बताइए।
0: हमको रोटी फिल्म का गाना सुनना है।
1: गीत के बोल,
0: याद हमारी बात सुनो, ऐसा इंसाफ सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं कश्मीर सोना मरक से।
0: कश्मीर से?
1: हाँ, लतीफ अहमद रीना
0: जी। जी बताइए।
1: हाँ,
0: क्या करते हैं आप?
1: बस अपने घर की काम करता हूँ, खेती बाड़ी वगैरह।
0: अच्छा, आप खेती करते हैं?
1: हाँ जी।
0: तो कश्मीर में इस वक्त मौसम कैसा है?
1: अभी मौसम तो सुहाना है।
0: सुहाना है, बारिश हो रही है?
1: नहीं, बारिश तो नहीं है अभी, तभी धूप है यहाँ।
0: अच्छा, यहाँ धूप है तो गर्मी पड़ रही होगी फिर?
1: बहुत गर्मी है अभी
0: तो। अभी तो आपने कहा मौसम सुहाना है, तो सुहाना तो तभी होता है ना जब बारिश शुरू हो जाती है।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में।
1: जी मैं विकास प्रयागराज से बात कर रहा हूँ मैम, कैसी हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं, आप बताइए प्रयागराज का मौसम कैसा है?
1: मौसम मैडम जी गर्म गर्म मौसम है, अभी यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे प्रयागराज में।
0: जी आप क्या करते हैं?
1: ट्रक चलाते हैं। आपका कार्यक्रम सुनते बहुत अच्छे लगते हैं, कार्यक्रम आकाशवाणी झांसी के।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: इसमें दिन भर जितने भी कार्यक्रम आपके यहाँ प्रसारित किए जाए सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप लोग प्रस्तुत करते हैं और पुनिंग कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है।
0: अच्छा जी जी बताइए, आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: फरमाइश हमारी ये है, फिल्म का नाम है कुरुक्षेत्र।
0: कुरुक्षेत्र
1: और
0: जी,
1: और गाने का बोल है कभी दिल घबराए कभी नींद उड़ जाए। हम किनसे बात कर रहे हैं, अपना नाम बता सकते हैं?
0: जी हम लक्ष्मी माहौर बात कर रहे हैं।
1: बहुत अच्छा नाम है, बढ़िया, बहुत बढ़िया
0: जी। धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार जी, मैं बनिया पारा धमतरी से बोल रहा हूँ, रामचंद मखिया काफिर भाई।
0: रामचंद जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: धमतरी छत्तीसगढ़ से मैडम
0: जी। बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरा छोटा सा रेडीमेड का काम है, सिले सिलाए वस्त्र जैसे नहीं होते जीन्स शर्ट आजकल जो चल रहा है, टी शर्ट वगैरह
0: जी।
1: क्योंकि अब पहले थान कपड़ा रखते थे, मीटर में काट के अपने सिलवाते थे टेलरों से, तो आजकल रेडीमेड में सुंदरता भी आ गई है और नए नए डिजाइनें भी डाल लेते हैं।
0: हाँ रेडीमेड का जमाना है, आप है ना।
1: अब क्या है मैडम, छठी वाले से लेकर बड़ों तक के जो है रेडीमेड का चलन है, एक आध कोई है जो सिले सिलाए पहनता है, समय का परिवर्तन है
0: जी। सही बात बताइए, आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: आप सुनाइएगा, लाल पत्थर का गीत है किशोर कुमार साहब जी की आवाज में, गीत गाता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ मैं, क्योंकि हंसने का वादा किया था कभी।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ।
1: हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
2: नितेश आर्या, प्रयागराज से।
1: नितेश
2: जी, मैम
1: जी बताइए,
2: कैसे आप?
1: हम बढ़िया, आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है?
2: बहुत ही अच्छा, अभी गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी पड़ रही है
2: जी, कैसे आप?
1: हम अच्छे हैं, आप बताइए, आप करते क्या हैं?
2: ये भी पढ़ाई कर रहे हैं।
1: पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप?
2: अभी 9th में है।
1: अच्छा, आप स्टूडेंट हैं?
2: हाँ जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, हमारा नाम लक्ष्मी मावर है।
2: आज से पहली बार बात हो रही है।
1: धन्यवाद आपका कि आपने फोन लगाया आज के दिन हमारी ड्यूटी पर। फिर अपनी फरमाइश बताइए।
2: फिल्म का नाम है प्यार क्या तो बनने क्या, गाने बोले हम तुम पर अच्छे हैं यारा।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में। कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी हम अभिषेक बोल रहे हैं गरौठा से।
0: अभिषेक जी बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं वैसे तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: जी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप?
1: मैं आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा बताइए, आप हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनते हैं?
1: जी मैं सारे प्रोग्राम सुनता हूँ आकाशवाणी के, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अपनी युवाओं का कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: अच्छा अच्छी बात है, चलिए आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: मुझे वो चालबाज फिल्म का एक गाना है
0: जी,
1: तेरा बीमार मेरा, मोहम्मद अजीज की आवाज।

0: अच्छा, आपका पसंदीदा गीत सुनवाने से पहले, आप गर्मी का मौसम चल रहा है जैसा हम सभी जानते हैं, अब आप गर्मी के इस मौसम में हमारे श्रोताओं को कोई जानकारी देना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल देना चाहेंगे
0: जी, बताइए।
1: हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता हैं
0: जी,
1: जो लोग हैं, वो इस भीतर गर्मी में अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, और इस गर्मी में लू से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीते रहें
0: जी,
1: हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने, और दोपहर 12 से शाम के 4 बजे के बीच में ही मतलब धूप में जाने से बचें।
0: आपने
1: और अपना तरल पदार्थ लेते रहें, काजू फल लेते रहें, है ना, और ज्यादा चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से बचें।
0: जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी के लिए धन्यवाद। चलिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो झांसी में। कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं रिंकू बोल रहा
0: हूँ। रिंकू जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं मोट से बोल रहे हैं।
0: मोट से जी, बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी हम वैसे तो मजदूरी करते हैं, लेकिन हम साथ में अपना रेडियो भी ऐसे रहते हैं तो सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, मतलब काम करने के साथ साथ आप हमारे कार्यक्रम भी सुनते हैं।
1: जी
0: बताइए, आप अपनी फरमाइश बताइए।
1: जी हमें वो गाना सुनना है, गदर फिल्म का है, मुझे काफी
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: श्रोताओं, गीत संगीत की दुनिया से निकलकर अब हमारी नजरें टिक गई हैं घड़ी की सुइयों पर, जो हमें इशारा कर रही हैं कार्यक्रम से विदा लेने का। तो चलने से पहले आपको बता दें कि हेलो झांसी कार्यक्रम के लिए हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं प्रत्येक रविवार और प्रत्येक बुधवार दोपहर 2 बजे से। हमारा फोन नंबर है 0510-232-0068। हेलो झांसी कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक सोमवार और गुरुवार रात्रि 9:30 से। उन सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन जिनके फोन कॉल्स आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, वो कृपया 2 माह के अंतराल के बाद ही इस कार्यक्रम में फोन करें, ताकि हमारे अन्य श्रोताओं को भी कार्यक्रम हेलो झांसी में शामिल होने का मौका मिल सके। और अब चलते चलते हेलो झांसी सुनने के लिए और हमारे अन्य कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप हमारी फेसबुक आईडी आकाशवाणी झांसी और न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें कि आज का हेलो झांसी का सफर आपने तय किया आपकी रेडियो सखी लक्ष्मी माहौर के साथ। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। अब दीजिए हमें कार्यक्रम हेलो झांसी से इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो झांसी।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था लक्ष्मी माहौर का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं पंकज उधास। आइए सुनते हैं इनकी गाई चंद गजलें और गीत।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के झांसी केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं पंकज उदास। लीजिए सुनिए इनकी गाई ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गायी गजलें। लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए पंकज उदास की गायी ये गजल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंकज उदास की गायी चंद गजलें। इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस।